नमस्कार। FM बैंड 102.7 MHz से यह है आकाशवाणी जलंधर केंद्र का FM रेनबो चैनल है। अज मंगलवार है, शक संवत 1948 दे आषाढ़ महीने की 10 तारीख है। तारीख तद अनुसार ईस्वी सन 226 दे जून महीने की 30 तारीख है। इस वेले सवेर के 5:58 हो रहे हैं। साड़ी अज की सभा हुण शुरू हुंदी है। FM रेनबो अपने सारे स्रोतियां दा निगाह स्वागत करता है।

इस वेले तुसी सर्वन कर रहे सी भगती रस दा प्रोग्राम वंदना ते हुन वेला हो गया है FM न्यूज हेडलाइंस दा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन विखे साल दे दूजे रखिया सम्मान समारोह विच बहादरी पुरस्कार प्रदान कीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेशेल्स दा दौरा काफी सार्थक रहा अते इस नाल भारत सेशेल्स दी दोस्ती मजबूत होवेगी। हरियाणा ते राजस्थान सरकार ने नवी दिल्ली विच गृह मंत्री अमित शाह दी मौजूदगी च यमुना जल प्रोजेक्ट बारे एक समझौते ते दस्तखत कीते। श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब सरकार नू श्री अकाल तख्त साहिब वालों बेदबी विरोधी कानून संबंधी उठाए गए सारे एतराजां दा एक महीने दे अंदर अंदर हल करन दे निर्देश दिते ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सीनियर पुलिस अधिकारियां नू यूथ नशियां विरोध मुहिम नू होर तेज करन दे निर्देश दिते ने। तीन जुलाई तो शुरू होने वाली श्री अमरनाथ दी यात्रा लई सारियां तैयारियां मुकम्मल। मौसम विभाग वालों आज पंजाब विच कुछ थावां ते हल्की तो दरमियानी बारिश दी संभावना जबकि पहली जुलाई तो पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच भारी बारिश अते तापमान विच गिरावट बारे अलर्ट जारी किया गया है। भारत

अंडर 19 मुंडियां दी टीम ने बैंकॉक विच एशियन यूथ चैंपियनशिप दे क्वार्टर फाइनल विच हांगकांग नूं 3-1 नाल हरा दिता है। अते भारत महिला क्रिकेट टीम ने लॉस एंजलस विच 2028 ओलंपिक खेडां लई क्वालीफाई कर लिया है।

उसी सारी नियत ट्रेनिंग के 102.7 मेगाहर्ट्ज ना 103.6 मेगाहर्ट्ज भी तो प्रोग्राम सुन रहे हो गुड मॉर्निंग जलंधर. अभी हर जगह उस राहिल नाल वैसे अज दे मौसम दी गल करिए ने अज दा मौसम ते जदों मैं आई सी उदों ते बड़ा ही प्यारा मौसम बनिया होया सी ते ठंडी ठंडी हवावां भी चल रही सी. हुण मौसम दे हाल चल गए ने. देखो हर एक टाइम दे आपां देखिए ना मौसम किस तरह बदल जांदा है जिवें इंसान बदलदे ने. हम अपने आले दुआले की भी गल कर लें. आसाम ते अरुणाचल प्रदेश की गल करिए ते उत्थे ते स्थिति इन्नी ज़्यादा विगड़ी हुई कि हज़ारा तो वध लोग जड़े इस तो प्रभावित हो रहे हैं. हुण मीह की गल करिए साढ़े इतने मीह कितने थोड़ा थोड़ा ही टिंग टिंग करके वेखन नूं मिलता है पर उत्थे ते माहौल जड़ा हड़ वाला बनिया होया है. जे उत्थे की गल करिए ते अखबार दे विच ते यही सी 29 जून की गल करिए अरुणाचल प्रदेश या आसाम दे विच लगातार मीह के कारण हड़ा ते डिगा डिगन की जी है स्थिति बनी हुई है. तो इस जो वेख्या जाए अरुणाचल प्रदेश के 12 तो वे जिले है उन्होंने स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हुई हुई है. तो जो कि आसाम की गल करिए 275 पिंड हड़ा के पानी के डुबे हुए हैं. किन्ने लोग इस तो प्रभावित हो रहे हैं. इस करके पहला ही जड़िया चीज़ा इन्हों देखना चाहिए है. तो हूँ भी इतने भी तो अजक आप देखिए साढ़े इतने तो गर्मी इन्नी ज़्यादा वही हुई है पंजाब दे विच. पर फिर भी जी है मौसम विभाग का तो यही कहना है हूँ 1 जुलाई तो इतने भी मीह वाली जी है ना संभावना बढ़ जाएगी ज़्यादा मीह हो सकता है. तो इस करके पहला ही छोटिया छोटिया चीज़ा जी है अपनी चीज़ा अपडेट कर लो. तो जो मीह हों उस वे जो बारिश हो रही जो खंबे हो गए तार हो गए इन चीज़ों तो सानू दूर रहना चाहिए बिजली वाली चीज़ों तो खासकर जो आसमान के बिजली कड़क रहे उस वेले भी पेड़ के थले नहीं जाना चाहिए क्योंकि उच्ची उच्ची जी चीज़ा होंगे जो बिजली कड़क रही सब तो पहला उन्हें ही चीज़ों पर डिगदी है. इस करके अपने घर आराम तो रहना चाहिए है उस वेले. तो हूँ जब आप गल करिए मौसम के इन ज़्यादा तब्दीलियां वेखन मिलती है. मौसम कदों वेले बदल जाए कई बार सू तो आप नहीं पता लग जाए. जो आप मौसम की अपडेट्स भी चेक करते सू इदा लगता कि अज मीह होने वाला है हवावं चलदी ने ठंडी ठंडी फिर नाल ही सूरज जी ने वेख लें तो ना ही लगता आह आ की लिखा अज तो बारिश सी लेकिन की हो गया सूरज निकल आया है.

इज्जत देना ही असल इंसानियत की पहचान है। हर धी हर भैन का रखिया करना जी है उन्होंने सुरक्षा करना भी साड़ा एक सफर साड़ा साड़ी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है। कुदरत भी यही सिखाती है, कानून भी सानू यही सिखाता है कि सुरक्षित समाज के नाल ही देश जड़ा है अगे बढ़ता है।

APLA ने हाल ही विच अरुणाचल प्रदेश विच घुसपैठ कीती अते कैंप कायम कीते ने। फौज ने कहा कि अजिहियां खबरां गलत ते बेबुनियाद ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोंगो दे विदेश मंत्री थेरेस काइकपांगा वैगनर अते उत्थे दी सरकार ते लोकां नूं देश दे स्वतंत्रता दिवस दे मौके ते शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्हां कहा कि भारत दोवां देश विचकार अपने दवल्ले संबंधां ते विकास भाईवाली नूं डूंघा करन दी उम्मीद करदा है। 3 जुलाई तो शुरू होने वाली 57 दिनों की श्री अमरनाथ यात्रा लई जम्मू कश्मीर ते पंजाब भी सुरक्षा प्रबंध सख्त कर दिए गए ने। तीर्थ यात्रा के राह बेस कैंपा तो पवित्र गुफा वल जाने वाले दोवां रस्तियां ते व्यापक इंतजाम किए गए ने। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने शुरू हो गए ने। जम्मू में सीसीटीवी कैमरे ते आधुनिक निगरानी प्रणालियां सरगरम कर दिया गया है। अमरीका ते ईरान अज कतर की राजधानी दोहा विच होरमुस पणजोड़ ते चल रहे विवाद ते गलबात करनगे। ये गलबात हाल ही विच होए फौजी तनाव ते एक अस्थाई जंगबंदी तो बात हो रही है। दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की आवाजाही इस जलमार्ग राही होंदी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप विच 5 बार का चैंपियन ब्राजील जापान ने 2-1 नाल हरा के राउंड ऑफ 16 विच पहुंच गया है। हुण ब्राजील का मुकाबला राउंड ऑफ 16 विच आइवरी कोस्ट या नॉर्वे नाल होएगा। आखिर च खास खबरां। केंद्र ने 1 जुलाई तो पेट्रोल ते डीजल की विक्री ते वंड ते लाईयां अस्थाई पाबंदियां हटा दित्तियां ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज विच इकसार सिविल जाबता लागू करन दा फैसला कीता है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म सनत नूं उत्साहित करने लई एक उच्च पदरी अध्ययन समूह के गठन समेत 2 अहम फैसलों का ऐलान किया। भारत ने पाकिस्तान वल्लों अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों च किए गए हवाई हमलों की सख्त निखेधी की है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 होएगा। नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, गाना तो बड़ा सोहना सी, लेकिन हाँ मैं तुहाड़ी ऑडियोज का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है जी दिल अपना पंजाबी। ते साडे विच ना वो दोस्त भी मौजूद ने जिन्हां कोल टैलेंट तो हैगा है, जिन्हां कोल गल्लां भी बहुत सारियां ने, ते जिहड़े ना प्रोग्राम सुनते भी ने, लेकिन वो इदां करदे आ आराम नाल बैठे हुए सुनते रहन के, लेकिन फोन नू चक के ऑडियोज़ जिहड़ियां ने वो रिकॉर्ड नहीं करनगे, क्योंकि शायद उन्हां दे हाथ विच कोई सब्जी हो सकती है, वो सब्जी कट रहे होण, शायद उन्हां दे हाथ विच लस्सी का गिलास हो सकता है, या फिर चाह पी रहे होण, या फिर हुणे हुणे मेरी गल सुन के हस भी सकते ने कि हाँ गल तां कुड़ी सही कह रही है। फिर चलो जी, सुन रहे हो तो फिर जवाब भी दो ना, थोड़ी जी मशक्कत तुसी भी करो, अपना फोन चको, ऑडियो सेंड करो, ते नाल जेड़ियां भी गल्लां मैं कहियां वो भी तुसी ध्यान विच रखनियां ने, क्योंकि प्रोग्राम दे विच तुहाडे करके ही रौनक हुंदी है। तो चलो जी एक बार फिर नंबर नोट डाउन कर लो, 9855101027 ते नंबर डायल करके तुसी नंबर ते रिकॉर्ड कर लो ऑडियो ते सानू भेज दो। तो चलो जी अगला गीत सुनते हैं ते मिलते हैं गीत दे उस पार।

0: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम दे विच असीं फिर वापस आ गए हैं दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम दे विच। ते हाँ, साडे दोस्तां ने मैसेजेस भी सानूं भेजने शुरू कर दिते ने। तां चलो जी, पहला मैसेज असीं सुणदे हाँ साडे दोस्त की कहिंदे ने।
1: हैलो राहिल मैडम जी, गुड मॉर्निंग। ते प्रोग्राम अपना दिल अपना पंजाबी दे विच हनुमानगढ़ तों सुनील कुमार मैसेज भेज रहे हैं जी।
0: जी,
1: ते मैं कहना सी के दिल अपना पंजाबी दे विच ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਔਰ ਅਭੀ ਅਭੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਹ ਹੋਣੀ

जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसी प्रोग्राम दे विच शिरकत कीती। ते एक होर चीज़ मैं कहनी सी कि अज साढ़े सारे दोस्तां ने काफ़ी सारे मैसेज भेजे, ते काफ़ी सारियां गल्लां कीतियां, कुछ अपने दिल दियां, कुछ अपने जिहड़ी पुरानियां यादां दियां, या फिर कुछ कहावतां अखाणां। ते इन्हां सारियां गल्लां दे विच मैनूं एक गल चेते आई कि साढ़े जिहड़े लिसनर्स ने ना, अज उन्हां ने मैसेज तां भेजे, लेकिन उन्हें मैसेजेस के विच ना एक अलग जे अपनापन सी। इदा लग्या कि हाँ साढ़े दोस्तों ने ना दिल तो मैसेजेस भेजे ने, उदा तो दिल तो भेजते हैं, लेकिन आज अलग ही वखरापन सी। तो मैंने तो बहुत खुशी हुई। तो चलो जी एक छोटा जिहा गीत सुनते हैं, गीत दे उस पार असी बाकी दे जिहड़े मैसेजेस ने उन्हां नूं असी पढ़ते हैं।

अजय भी 6 months आर लेफ्ट, तो जुलाई तो लेके दिसंबर तक दा प्लान किए, कुछ खास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इस बारे जरूर सोचो। फिलहाल मैं नहीं सोच रही, अगला गीत कह रहा है सानू कुछ बहुत खास कह रहा है। सो इस गीत नू एंजॉय करते हैं, उस तो बाद मिल रही हूँ तुम्हें सिर्फ इतनी, स्टे ट्यून्ड विद एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

मेरे वालो विजी थानू खम्मा गणी, वैसे देखो खम्मा गणी हो या फिर सश्रीकाल हो, गुड मॉर्निंग हो, आदाब हो या नमस्कार हो, सवेरे सवेरे एक दूजे नू विश करन दे किन्ने तरीके हुंदे ने ना, और हर एक दा अपना स्टाइल हुंदा है। कोई भी सवेरे सानू मिल रहा हुंदा तां कोई ना कोई वर्ड सानू जरूर है ना विश करन लई कहंदा, ते असी भी उहदा वेलकम इसी तरीके नाल करदे आ। तो बहुत सारियां चीज़ां हैं जिदां दे नाल असी अपने दिन दी शुरुआत करदे आ, और इहनां दे विच एक चीज़ होर है, एंड दैट इज़ अपनी जिहड़ी टाइमिंग है ना। कई वारी की हुंदा है कि आपां सोचदे आ कि चलो छुट्टियां ही चल रही हैं, हुण तो छुट्टियां

वाह भाई वाह, मैं क्या जनाब, मेनू भी देखो ये टप्पे सुन के, वो भी हिंदी एक कुछ मेनू भी आ गया कि कभी दिल से दिल मिलाया करो, और FM रेनबो लगा के 10 बजे गीत बहार दे।

सुनो तो सुनाया करो, वाह वाह वाह, थोड़ा जा हंस दो, स्माइल कर दो। मैं क्या तुझे तो कर नहीं रहे हो, चलो मैं ही कर देनी अपने पास तो है ना जी। 10:24 हो चुके हैं और म्यूजिक तो देखो यही कमाल होता है कि सिचुएशन कोई भी चल रही हो है ना लाइफ दे विच, कई बार की होता है ना कि साडा दिमाग ना मतलब काम नहीं कर रहा होता और कितने वैसे लगता ही नहीं है, तो अचानक जे अगर सर रेडियो लगा रखे ना और रेडियो दे कोई बीट इदा दी या फिर कोई म्यूजिक इदा दा साडे माइंड दे विच क्लिक करदा ना अचानक आके, और फिर पूरा दिन असीं उस गीत नूं या उस म्यूजिक नूं ही फिर दिल दे विच कह लो या मन दे विच कह लो बस इंजॉय करते रहने हैं। सो हो सकता है अगला गीत ये वाला गीत जिहड़ा ना इहनू सुन के तुसीं भी हुण इंजॉय करोगे, मैनू पता है करोगे करोगे, ते नाल ही नाल जुड़े रहोगे मेरे नाल रिचा दे नाल। स्टे ट्यून्ड विद एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

सो वंस अगेन वेलकम बैक आज 102.7 एफएम रेनबो ते एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम गीत बहार. वैसे सुरूर तो देखो अजकल आप सोशल मीडिया की गल करिए ना तो नवे नवे ट्रेंड फॉलो करन दा जिहड़ा सुरूर है ना साडे सारियां दे दिल ते छा ही जांदा है. और आप देखो पिछे रहने की ना कोशिश नहीं करते, कोई भी नवा ट्रेंड फॉलो होया नहीं कि आप बस लग जाते हैं जी लाइन च कि आप भी कर लीए इनू और फिर नाल नाल उनू पोस्ट भी कर दी है ना. हम देखो सोहनिया चीज़ा जेकर फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो बहुत वधिया है, पर कोई गलत चीज़ ना करिए, ना ही कुछ इदा का करिए कि जिद करके साड़ी गलती का जो खामियाजा है ना किसी होर भुगतना पै जाए, है ना जी. इस करके अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए और फॉलो करते रहिए फिलहाल प्रोग्राम गीत बहार. और कुछ फॉलो करनी है तो अगले गाने नू फॉलो करके दिखाओ, गा के दिखाओ, ये वाला जरूर फॉलो करके दिखाओ तो मैं तुम्हें समझ जावा. स्टे ट्यून्ड.

हाँ जी, मैं कह रही आवाज़ सुन के हूँ दोस्तों, पता ही लग रहा है कि 11:03 ते 2 सेकंड हो चुके हैं। 102.7 FM रेनबो ते इस टाइम तड़का लगन जा रहा है और किचन दे विच तुसी तड़का लगाओ जो मर्जी बनाओ, पर FM रेनबो ते आके इस टाइम पंजाबी गीता दा जड़ा तड़का लगता है ना उहदे विच शामिल हो सकते हो। और अज रिचा तुहाडे नाल जुड़ी हुई है ते मेरे नाल कौन कौन अपनी हाजिरी लगवाएगा किस नंबर दे जरिए 0181-4142-174 नंबर नूं डायल करके इस प्रोग्राम च लाइव तुसी वी जुड़ सकते हो। नंबर एक बार फिर मैं दस रही हाँ जी, 0181-2342-174। सो इस नंबर से कॉल करके जो भी थोड़ी फरमाइश है पंजाबी गीतों की वो तुसी मेरे तक पहुँचानी है जी, और गलबात करांगे थोड़े नाल, है ना जी। बहुत खास चीज़ से अज गलबात करेंगे कि देखो पंजाबी तड़का प्रोग्राम का नाम है और पंजाबीयत की अज गलबात होएगी। सो मेरे ख्याल नाल बहुत सारे दोस्त इस प्रोग्राम से जुड़न की कोशिश करते हैं और डेली भी जुड़ते हैं, बहुत दिन बाद भी कईयों का नंबर लगता और कईयों का लगता ही नहीं है, कंप्लेन करते रह जाते हैं कि जी साड़ी कॉल नहीं लगती। सो मौका देने की तो आप पूरी पूरी कोशिश करा कि जी बहुत सारे दोस्तों अज मौका दिए। सो पंजाबी तड़का की शुरुआत कर रही हूँ फिलहाल इस गीत के नाल, और जुड़े रहो तुम मेरे नाल और नंबर डायल करो फटाफट, इंतजार कर रही हूँ जी थोड़ा। स्टे ट्यून्ड विद FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: क्या कुछ एक हो सकता है ना जी?
1: नहीं सर, मैं उस सिलाई का काम की पे आ गया।
0: अच्छा ठीक है ठीक है। जेड़े पंजाबी तो डरते नहीं हैं, मतलब टीचर तो डर के फिर रहते
1: स्कूल
0: सी काम च पै गए।
1: में गाड़ियों भी नंगिया नहीं थी मुड़के।
0: ठीक है ठीक है। चलो मृतपाल जी, गीत केड़ा सुनने दसो फिर।
1: गाना तो ही अपनी पसंद का ला लो, जेड़ा मर्जी। तुम गाने भी बहुत बढ़िया लाने, प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया पेश कर रहे हो।
0: ठीक है जी, जिन्नी तारीफ सारे दोस्त करन लग जाएंगे तो फिर सानू टाइम नहीं मिलना कि होर दोस्तों असी शामिल किवें करांगे प्रोग्राम च। सो फिलहाल गुरदास मान की आवाज़ आ रही है तो उस तो बाद एक होर दोस्त नू लेंगे आ रहे हैं जी पंजाबी तड़का दे विच। स्टे ट्यून।

0: आंखें आंखों से मिला लेना, भेद खुल जाएगा सारा। लो जी, मैं कन्वर्ट कर दिए लाइन हिंदी दे, और अगले दोस्त किड़े ने जिन्हें नाल असी गलबात करांगे। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी,
1: आपा रिंकू भगत जी।
0: आपा रिचा जी।
1: हां जी।
0: रिंकू जी, की हाल चाल है?
1: ठीक ठाक मैडम जी, आपने सुनाओ जी।
0: अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। की कर रहे थे इस टाइम?
1: हां जी,
0: की कर रहे हो इस टाइम?
1: बस काम कर रहे थे, चिड़िया बना रहे थे।
0: चिड़िया?
1: हां जी।
0: चिड़िया तुसी बनांदे हो जड़े पेड़ ते बैठियां हुंदियां ने?
1: कैटल बॉक्स में।
0: अच्छा, ओके, ऐ क्या करो ना, मैं ता हुन पेड़ ते उड़ गई सी, मैं कहा लाए चिड़िया बनांदे ने।
1: लब थोड़ा बन गया पर चिड़िया बनानियां ने।
0: ठीक है ठीक है। रिंकू जी, होर तुसी सुनाओ, पंजाबी पढ़ी हुई हो तुसी? केड़ी जमात तो पढ़ी सी दसो?
1: पंजाबी थोड़ी घणी पढ़ी सी जी, ज्यादा नहीं पढ़े, आपां कम्मां च पै गए ज्यादातर।
0: अच्छा, थोड़ी की ज्यादा?
1: थोड़ी सुना दी।
0: थोड़ी
1: थोड़ी की इस तरह के थोड़ी सुना देने। ओ किधर जा रहे हैं?
0: हां
1: मेरे यारा।
0: हाँ।
1: तू मैनू दस्या ही नहीं यार।
0: हाँ।
1: दस के जांदा मैनू।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: जान दो, तुहानू की लैणा, अगले नू काम होएगा।
1: ओ मैडम जी, गल पता की, अज लाया सी असी लंगर।
0: अच्छा।
1: हाँ, लंगर लाया सी भगत कबीर दा, ते अज तीजा दिन सी ना, आखरी दिन सी अज। ते मैं कहा चल लंगर ला दी है।
0: ठीक है।
1: गोपाल नगर दे लागे ही गुरुद्वारा, उत्थे लंगर लाया सी।
0: जी जी जी। ते हुण तुसी अपनी फरमाइश दसोगे? लो दोस्त, अपनी फरमाइश दसदे नहीं है, और देखो फरमाइश ही प्रोग्राम है, और मैं थोड़े नाल अज पंजाबी ते पंजाबी दी गलबात कर रही हां। हुण दोस्त इदां दियां काम करनगे तां फिर आपां की करिए? कुछ नहीं करना, आपां तां गीत चलाना, अगले दोस्त नूं प्रोग्राम दे विच शामिल करना है जी। स्टे ट्यून्ड।

0: की कारण है गुरदास मान जी, मेरा 4 दिना दा रिचार्ज हम 100 दिनों का करा लिए भाई। अरे प्रोग्राम चल रहा पंजाबी तड़का और अगले दो साढ़े नाल जुड़े ने जी। कौन? हेलो।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन दोस्त गल कर रहे ने?
1: मैडम जी मैं पॉल बोल रहा हूँ, सराबा नगर जलंधर तो।
0: जी जी जी, और मैं रिचा बोल रही हूँ जी। स्टूडियो तो की हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया, ठीक ठाक है जी, तुसी अपने सुनाओ।
0: चलो बहुत बढ़िया जी। ते पॉल जी, तुसी कुछ कर रहे हो, मतलब पंजाबी दी मैं गल करा जेकर थोड़े नाल, ते तुसी पढ़ी हुई है पंजाबी?
1: बिल्कुल पढ़ी है जी, पंजाबी साडे पंजाबी लग रही हुंदी सी पहले तो।
0: अच्छा ठीक है।
1: हाँ जी, पहले तो लैके तो तीजी तक पंजाबी, तीजी दे विच जाके हिंदी दा कैदा लगदा हुंदा सी।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: ठीक है ठीक है। ते उदो मतलब लास्ट कदों पढ़ी सी सब्जेक्ट दे तौर ते?
1: हाँ जी,
0: लास्ट लास्ट मतलब सब्जेक्ट दे तौर ते, एक विषय दे तौर ते कदों पढ़ी सी?
1: विषय के तौर पर तो

102.7 FM Rainbow Jalandhar, the live radio station. जी खुशियां दा खजाना वर द लाइव रेडियो स्टेशन. और इस टाइम लाइव लाइव टाइम बिल्कुल 10:04:28 28 सेकंड हो चुके ने ते प्रोग्राम हुन शुरुआत करन जा रहे हैं. वही प्रोग्राम जिदे नाल जुड़ के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुसी हासिल करदे हो हमेशा, है ना जी. और इस टाइम मैनू पता बहुत सारे दोस्त एक स्पेशल नोटबुक भी लगाई हुई है ना जी. और इस नोटबुक से बड़ी सोहने सोहने तरीके नाल जानकारी भी लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं. और लिखांगे किवें, हुन हत्थां नाल थोड़ी लिखांगे की गल करते हो. ऑब्वियसली एक पेन पेंसिल जो भी थोड़े कोल है जी लैके बह जाओ. हुण मैं पहले ही कह रही हूँ, बाद च ना कहो कि साड़ी ए जानकारी अज मिस हो गई. सो प्रोग्राम होम स्वीट होम की शुरुआत कर रही हूँ जी मैं यानी रिचा. और इस प्रोग्राम नूं तुसी मेरे नाल ठीक दोपहर के 1 बजे तक इंजॉय करना है. बहुत सारिया चीज़ा खास खास जानकारी है ना जी हमेशा अपने पिटारे चो लैके मैं हाजिर हूँ. और एक खास एक्सपर्ट भी अच्छ साढ़े नाल जुड़नगे ठीक 12:30 बजे. और बहुत खास गलबात रहने वाली उन्होंने नाल, क्योंकि ना वो जो टॉपिक है ना एक्चुअली मैं थोड़े हौली हौली करके तुम्हें दसागी की चीज़ है. फिलहाल मैंने पता कि तुहानू डिमांड हो रही है कि रिचा एक गीत दे नाल इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दे, तो उस तो बाद जो भी जानकारी है ना चलो फिर हौली हौली आप उस पिटारे चो कट दे. फिलहाल कट रहे हैं जी मोहित चौहान की आवाज़ से. वो अपनी आवाज़ चो की कुछ कट रहा देख लें, सुन लें.

ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और खासकर अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों हूँ जोड़ा मानसून का सीजन हूँ बस शुरू ही हो गया है कितने ना कितने, और शुरू होने भी वाला है ना जी। सो ये ना बीमारियाँ तो बचने लिए इन्होंने कुछ गाइडलाइनस जीडिया ने ना जारी कितिया ने इन्हों वालों, और गाइडलाइनस साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि जी गाइडलाइन है ना वो साफ सफाई में लैके हाइजीन मेनटेन करने ना बहुत सारे टिप्स हैं और खास गल्लां दा ध्यान रखा गया है। हुण देखो हाइजीन नू इन्हां ने ना कैटेगरीज विच डिवाइड किया है, जिवें कि किचन हाइजीन हो गई, फूड हाइजीन हो गई, और कुकिंग, वाटर हाइजीन, होम हाइजीन, परसनल हाइजीन ते बच्चियां दे लई हाइजीन। यानी कि एक जिहड़ी साफ सफाई दी आपां हर वारी गलबात करदे आ ना किचन तो लैके जिहड़ी शुरू हुंदी आ, खास करके प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम, और घर दे विच तो देखो घर दा हर कोना ही बहुत खास हुंदा है, और साफ सफाई का आप ख्याल रखिए। तो ये जिहड़ियां गाइडलाइनस ने ना अज मैं इन्हां दे नाल मतलब ये जिहड़ियां चीज़ां ने इहदी गलबात करांगे तुहाडे नाल, ते शुरुआत करांगे जी किचन हाइजीन ते जिहड़े ने रूल दस्से है कि कुछ आप अपने किचन नूं साफ करन लई खास ख्याल रखिए खासकर इस मानसून सीजन दे विच। लेकिन इस गीत तो बाद नीति मोहन आके मैनूं कह के जा रही है, वाले गीत इंजॉय कर लिए, उस तो बाद मिल रही हूँ तुहानूं सिर्फ इत्थे स्टे ट्यून्ड।

सो और कोई उड़े या ना उड़े, पर हाँ कुछ गाइडलाइंस उड़ के मेरे को जरूर पहुंच गया ने। और ये गाइडलाइंस आईया ने जी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI दे वालों। और देखो जनाब, मॉनसून आंदा है ना, शुरुआत हो जाती जो बारिश दी, और ये लैके आंदियां ने अपने नाल बहुत सारिया बीमारियां और छोटे छोटे खतरे भी होंगे ने, क्योंकि फंगस का इन्फेक्शन का खतरा होंगे है ना, और मॉइस्चर हर जगह हो जाता है। सो खाया

कल कर रहे हैं तब पता ही है। देखो वॉश करके तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर दें, कोई भी बाजारों आप सब्जी लेके आ रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं, कोशिश करिए। गाइडलाइंस के ये भी है कि जो कच्चा खाना है ना और जो कि कुकड फूड है उन्हें थोड़ा अलग अलग ही रखिए, और कोशिश तो ये भी करिए कि आप जी चीज़ बच गई है, मतलब कि समझ लो कि एक दिन पुरानी हो गई है, उन्हें ना ही खाइए तो बेटर है। बिल्कुल ताज़ा बनाइए, फ्रेश बनाइए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और फ्रेश ही उन्हें खा लिए है ना जी। बनाइए इन्नी क्वांटिटी दे विच कि बस वो ख़त्म हो जाए, रखना ही ना पाए सानू, है ना जी। और खासकर कोशिश करिए कि इस टाइम दे विच ना देखो फ्लाइज यानी मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती ने, और एक अजीब जहा मौसम हो जाता है, तो कोशिश करिए कि जरा अपना खाना है ना उन्हें खुला तो बिल्कुल ना रखिए, हमेशा कवर करके ही रखिए। और कोशिश ये करिए कि बाज़ार भी जा रहे हैं ना तो कवर्ड फूड ही खाइए, और थोड़ा टाइम अवॉइड करिए, है ना। पता है सानू इस मौसम दे विच चीज़ा जल्दी ख़राब हो जांदियां ने, या फिर पता ही नहीं लगता क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, बैक्टीरिया भी हर जगह सानू मिल सकता है। और खासकर जो फ्रिज है ना, फ्रिज दिख रहा है ना तुहानू अपने घर दे विच, इहनू भी साफ सफाई दी जिहड़ी वो डिमांड करता है, हर एक चीज़ साडी बॉडी जेकर डिमांड कर सकती है परसनल ग्रूमिंग दी, ये जिहड़ी अपलाइंसिस ने इन्हां नू भी टाइम टू टाइम साफ रखिए। और फ्रिज नू तो बिल्कुल जी इस मौसम दे विच हर हफ्ते जरूर साफ करिए, उहदे जिहड़े भी मैट्स हुंदे ने या फिर जो भी चीज़ा ने, है ना जी। बकायदा अजकल तो बड़े सोहने सोहने बैग आ रहे हैं सब्जियां रखने के लिए, तो आप कॉटन के बैग भी आ रहे हैं या फिर नैट के बैग भी आ रहे हैं, उन्होंने आप अपनी सब्जियां पा के रख सकते हैं, फ्रैश रहनगियाँ। और छोटे छोटे देखो कबड है ना, छोटी छोटी चीज़ा मसाले रखने लिए आप कुछ डिब्बे लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ा कर सकते हैं, बट हाँ हाइजीन का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल थोड़ा ध्यान रख रही हूँ जी मैं, अगले गीत बादशाह ते दिलजीत की आवाज़ के स्टे ट्यून्ड।

So after this proper patola, timing is proper. 12:25 हो रहे हैं जी और 8 सेकंड भी नालो नाल ले लिया अपन बुरा मान जान के सेकंड कहेंगे मिनट नू ले लिया मेनू तो लेता नहीं सो एंजॉय करियो प्रोग्राम तुसी होम स्वीट होम और रिचा थोड़े नाल जुड़ी हुई है जी आज और देखो अपा मानसून सीजन दी देखो गलबात कर रहे हैं जो शुरुआत हो जाती है तो खास ख्याल सानू रखना चाहिए कुछ बैक्टीरिया है ना जो सानू हाई हेलो कर रहा है उन्होंने कही कि थोड़ा साइड होकर बैठिए क्योंकि आप हाइजीन वाले रूल्स जो ना फॉलो कर रहे हैं और बरसात की गल चल पई है तो देखो अजकल एक सब्जी कह लिए तो बहुत ज़्यादा फल कह लिए कुछ भी कह लिए तुम अपनी लैंगुएज मार्केट के देखो मिल रहा है और इनू तो सब्जी बनाते हैं लोग कटहल की मैं गल कर रही हाँ जी मतलब कि जनाब इस की कहवा इस इंसान ने कहवा इस सब्जी से कहवा इस फल से कहवा इन्नी कु न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ने ना कि इनू न्यूट्रिशन का खजाना कहा जाता और अजकल के मौसम के जिधर देखो तुम बार कटहल इन्ना सोहना है ना रेड़ियाँ से विकता हुआ सूँ नज़र आता कई बार लोग मूँह बना लेंगे नहीं कि कटहल की सब्जी बनी है पर जेकर तुम्हें पता लगना कि इस कटहल कि फायदे ने ये हम तुम देख लो फाइबर है वाइटामिन सी है पोटेशियम है मैगनीशियम है और किन्नी तरीके के एंटीऑक्सीडेंट ने जो साढ़े देखो एक तो डाइजेस्टिव है ना सिस्टम जोड़ा है डाइजेशन यानी पाचन आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं वो बहुत वधिया नाल ही इम्यूनिटी लिए जो कि बहुत जरूरी होंगी इस मानसून के सीजन में जल्दी बीमार पन जाते हैं आछी ये जड़िया चीज़ा होंगे ने ना और हार्ट नू भी साढ़े बहुत हेल्दी रखता है सो कटहल जड़ा ना वाकई बहुत फायदे ने इसके और न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है ही है नाले जड़ा विटामिन सी है देखो इम्यून सिस्टम नू सपोर्ट कर रहा है ना जी और ब्लड प्रैशर के लिए भी बहुत वधिया है और मतलब अपनी जी अखा है ना वो भी ये बहुत वधिया है और बोन्स नू भी साड़ी हड्डियां नू भी बहुत मजबूत रखन च ये मदद करता है सो किसी भी तरीके दे नाल इहदी सब्जी भी बनती है ना किसी भी तरीके दी फॉर्म च आप कटहल नू इस्तेमाल कर सकते हैं हुण तुसी सोचो कि तुहाडे घर च कटहल कदों आया लास्ट हो सकता है अज ही आया हो चलो चलो बनाओ बनाओ और जेकर मैनू कटहल नू ए इन्नी सारी वैल्यूज सुन के इन्ना खास है चीज़ एक गाना डेडिकेट करना हो ना तो आई थिंक मैं अगला गाना डेडिकेट करांगी

0: की कहने से एक्चुअली पानी सा की पानी ला। देखो मैंने नहीं पता, फिलहाल गाना एंजॉय किया था 102.7 FM रेनबो थे। और मैं पहले कह सी कि आज एक खास एक्सपर्ट भी साढ़े नाल जुड़नगे। और बच्चियां दे लई देखो बहुत जरूरी हो जाती है जदों जन्म होंदा है किसी भी बच्चे का, है ना जी। और उस जन्म तो लैके बच्चा वड्डा हो रहा है तो टाइम टू टाइम जी वैक्सीनेशन है ना उसकी बहुत लोड भी होंगी है, एक्चुअली जरूरी भी होंगी चीज़ा। और कई बार सूँ पता नहीं लगता है ना कि किस टाइम कि वैक्सीन बच्चे नूं लगनी है। हालांकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, फिर भी आज इस खास वैक्सीनेशन दे उत्ते जानकारी असी अपनी खास एक्सपर्ट को लवेंगे। सो जुड़ गए ने जी साडे नाल शहर लुधियाने तो बच्चियां दी डॉक्टर जी स्पैशलिस्ट, सो पीडियोट्रिशन डॉक्टर कमल सेठी गुलाटी। और इन्हां दे नाल असी अज करदे हां जी गलबात। हैलो।
1: हैलो
0: मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम होम स्वीट होम में।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओके सो मैं एक्चुअली ज़्यादा इधर उधर की बात तो नहीं करूँ, बट हाँ अगर शुरुआत मैं देखो एक बच्चे के जन्म से लेकर चाहे वो 5 साल तक हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है वो वैक्सीनेशन सही टाइम पर सही वैक्सीन उसे मिलनी। सो बेसिक वैक्सीन और उनकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो चलो एक न्यू बॉर्न बेबी है, जन्म के तुरंत बाद कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है और क्यों?
1: देखो हम बर्थ पे जो है दो वैक्सीन लगाते हैं, वो मोस्टली जहाँ पे डिलीवरी होती है वहीं पे लग जाती है। एक BCG होती है और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन का शॉट होता है। उसके अलावा हम OPV ड्रॉप्स उनको बर्थ पे दे देते हैं
0: जी।
1: उसके बाद 6, 10, 14 वीक्स पे जब बच्चा 1.5 महीने का है, 2.5 महीने का है और 3.5 महीने का है तब उसको दो शॉट्स वैक्सीनेशन के देते हैं जिसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हम कवर कर लेते हैं और साथ में पेट की इन्फेक्शन के लिए हम रोटा वायरस देते हैं जो डायरिया को प्रिवेंट करता है।
0: ओके और
1: उसके बाद 6 मंथ पे हम उसको फ्लू और टाइफाइड का शॉट देते हैं। इसी तरह 9 मंथ पे दी जाती है, 1 ईयर पे दी जाती है, बूस्टर दिया जाता है और 4 to 6 पे फाइनल बूस्टर होता है।
0: ओके सो आपने अपना मैम आंसर शुरू किया तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर BCG का, देखो एक ना ये मिथ कह लो या फिर क्या कह लो कि कुछ लोग कहते हैं कि BCG का ना निशान बन जाता है या नहीं बनता, ये क्या चीज है?
1: नहीं, निशान ऐसा होता है कि जब हम वैक्सीन देते हैं तो एक ब्लेब की तरह बनता है, जैसे एक आप कह सकते हो कि थोड़ी सी उबराहट हो जाती है उस सरफेस पे, दो बाजू लगता है, ठीक है। उसके 2 to 6 weeks के बीच बीच में वो छोटा सा एक स्कार होता है जो लाइफ लॉन्ग रहता है एंड वो नॉर्मल होता है। मतलब वो कई बार आजकल तो इतना अच्छा तरीके से वैक्सीन लगता है कि दिखाई भी नहीं देता है एंड वो बिल्कुल नॉर्मल होता है।
0: मेरा क्वेश्चन ही यही था कि कई लोग कहते हैं कि निशान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये चीज ठीक नहीं है।
1: निशान कईयों को होता है कि निशान रह जाएगा, कईयों को होता है निशान नहीं होगा, तो दोनों केसेस में हम उसको नॉर्मल लेके चलते हैं।
0: ओके और ये 6, 10, 14 हफ्ते पे जो टीके लग रहे हैं इसके पीछे कोई लॉजिक है, मतलब ये इतने टाइम बाद या फिर कैसे? मतलब
1: लॉजिक ऐसा है कि हम बेबी में जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, उसके इम्यून सेल्स जो है, जो मेमोरी सेल्स हैं जो उसको सारी इन्फेक्शन से बचा के रखेंगे वो अभी बनने हैं। तो हम जब ये 6, 10, 14 वीक्स का वैक्सीनेशन देते हैं तो उससे हम उसकी बॉडी में मेमोरी सेल्स बना रहे हैं कि आगे चल के जब उसको वो वायरस या वो इन्फेक्शन उसके अंदर आए तो उसको उसकी बॉडी को पता हो। बेसिकली हम लो डोज में उसको ट्रिगर दे रहे हैं कि उसकी बॉडी को याद रहे कि ये अगर वायरस आता है मेरी बॉडी में तो मैंने ऐसे रिएक्ट करना है और बच्चे को उसके लिए कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर बॉडी को लगता है कि मैं मैनेज कर लूंगा इसको
0: जी। और मैम ये बूस्टर डोज मतलब इसका क्या मतलब है, लाइक जैसे PCV बूस्टर या फिर कोई भी बूस्टर, इसका कोई स्पेशल मतलब है?
1: बूस्टर का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो इम्यूनिटी हमको चाहिए, जो बिल्डअप करनी होती है इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो हमको इम्यून सेल्स भी ज्यादा चाहिए। तो वायरस का डोज हमने जो पहले कम दिया था, जो डोज हमने लिमिटेड अमाउंट में दिया था उतने पीरियड के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा और एक्सपोजर देते हैं और उससे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। और 4 to 6 का जो बूस्टर होता है उसके बाद तो वो लाइफ लॉन्ग ही रहता है, हमको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: ओके ये कौन कौन सी एज में, लाइक किस किस एज में ये बूस्टर डोज दी जाती है और कब तक, लास्ट कब तक दी जाती है?
1: जो ये 6, 10, 14 वाला वैक्सीन होता है इसका हम एक बूस्टर 1.5 साल पे देते हैं और एक बूस्टर हम देते हैं 4 to 6 years के बीच में,
0: ठीक है।
1: उसके बाद हमको उसका डिप्थीरिया का और पर्टूसिस का बूस्टर देने की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: ओके और अगर बाय चांस कोई डोज किसी की मिस हो जाए बच्चे की, नहीं कोई भी रीजन हो सकता है, तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में?
1: देखो उसमें हम कैचअप वैक्सीनेशन

0: करते हैं वो कौन कौन सी डोजेस मिस हुई हैं, उसके हिसाब से हम उसका सारा चार्ट दोबारा फ्रेम करते हैं और उसके हिसाब से हम उनको देते हैं. बहुत सारी एज ग्रुप्स में अगर लेस देन 2 इयर्स है तो हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वैक्सीनेशन कवर कर सकते हैं बाय द एज ऑफ 2. लेकिन अगर 2+ हो जाता है तो मेन वैक्सीन जो होती हैं, जैसे कि टाइफाइड की वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन, ये हम बेसिक वैक्सीनेशन पूरी कर देते हैं. बहुत सारी हम नहीं भी कर पाते, बट जितना हम उसको कवर अप दे सकते हैं, हम 5 इयर्स ऑफ एज तक वो सारा कवर अप दे सकते हैं. इवन कुछ वैक्सीन हम 7 इयर्स पे भी दे सकते हैं.
1: ओके, और कोई बाई चांस, मैं जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ कि कोई बच्चा जैसे अभी 3 इयर्स का या 4 इयर्स का हो गया और उसकी टाइफाइड की जड़ी वैक्सीन है वो मतलब मिस हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं?
0: तो हम उसको दे सकते हैं 3 इयर्स पे.
1: 3 इयर्स पे दे सकते हैं?
0: बिल्कुल दे सकते हैं. हम 3 इयर्स पे टाइफाइड भी दे सकते हैं, हेपेटाइटिस ए भी दे सकते हैं, फ्लू भी दे सकते हैं.
1: ओके, और वैक्सीन के कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट्स भी बच्चों को मतलब हो जाते हैं, मतलब जिनके देखे हमें घबराने की जरूरत नहीं है?
0: देखो, बेसिक वैक्सीनेशंस के साइड इफेक्ट होते हैं कि जहाँ पे हमारा नीडल प्रिक हुआ है, क्योंकि वो नीडल तो अंदर गई है ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाना, थोड़ी सी रेडनेस हो जाना, या फिर बच्चे को उस लेग में थोड़ा सा अकड़ाव महसूस होना. कई बच्चों को कुछ वैक्सीनेशन से फीवर भी आता है. आजकल तो बहुत अच्छी वैक्सीन आ गई हैं जिसमें फीवर नहीं भी आता है, बट फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड फर्स्ट 3 डेज कुछ ना कुछ बच्चे की, क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी बना रही है तो उसमें कुछ ना कुछ हमको साइड इफेक्ट्स तो नहीं, कुछ ना कुछ हम उसके चीजें इफेक्ट्स देख सकते हैं.
1: फीवर से मुझे याद आया, एक्चुअली कई बार मैं बात करूँ लोगों की तो ना ये कह लो मिथ है कि क्या है कि डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार तो आया नहीं, वैक्सीन ठीक थी ना.
0: तो क्योंकि आजकल बहुत सारी वैक्सीन जैसी आती है जिनसे फीवर नहीं आता है.
1: ओके,
0: तो वो बिल्कुल नॉर्मल है.
1: ओके, और डॉक्टर को दिखाने की कब जरूरत पड़ जाती है? ऐसा कोई मेजर कुछ बच्चे में कोई एलर्जी का कोई सिम्टम?
0: ऐसा होता है कि वो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर वैक्सीन गलत जगह पे लगी है, गलत टेक्निक से लगी है, या फिर बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो थी, बच्चा किसी इन्फेक्शन में था, तो उस साइट पे कई बार हमारा पस पॉइंट बन सकता है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग, विजिबल स्वेलिंग हो सकती है, या बच्चा लेग बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा है, या फिर बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, मतलब 102, 103, 104 तक फीवर जा रहा है. उन केसेस में हमको दिखाना पड़ता है. और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ होता, वो बेबी में ऑलरेडी कुछ चल रहा होता है, कोई इन्फेक्शन चल रही होती है, या कोई और वायरल इन्फेक्शन पकड़ लिए, या मलेरिया पकड़ लिया, वो उसके कारण भी हो सकता है. और पेरेंट्स कोरिलेट कर लेते हैं कि ये वैक्सीन की वजह से ना हुआ हो. तो उन केसेस में डॉक्टर को मिलना जरूरी है.
1: जी, और अगर बच्चा पहले से बीमार है तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए.
0: बिल्कुल रुक जाना चाहिए, एटलीस्ट 14 to 15 days रुक जाना चाहिए, 2 हफ्ते.
1: रिकवर एक बार बच्चा कर ले तो उसके बाद वैक्सीनेशन कर लेनी चाहिए,
0: उसके बाद हम कर सकते हैं.
1: और प्री मैच्योर जो बेबीज होते हैं, लाइक जिनका मतलब टाइम से पहले जन्म हो गया, या फिर लो बर्थ वाले जो बच्चे होते हैं, क्या उनका वैक्सीनेशन अलग होता है?
0: देखो, शेड्यूल तो सेम रहता है. सिर्फ हम ये कोशिश करते हैं कि अगर बच्चा 1 किलो या 1.5 किलो का है तो हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट बच्चा 2 से 2.5 किलो तक, 3 किलो तक हो जाए, तब हम उसको फर्स्ट शॉट ऑफ वैक्सीनेशन दें, ताकि उसकी इम्यूनिटी बन सके और बच्चा उस वैक्सीन लोड को हैंडल कर पाए.
1: और
0: कुछ नहीं होता है.
1: और एक पॉइंट और है कि कहते हैं कि कई बार बच्चों को जैसे वैक्सीन लगने के बाद मालिश नहीं करनी चाहिए या नहलाना नहीं चाहिए, क्या ये भी सच है?
0: 1 डे वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वैक्सीन स्प्रेड हो रहा है, बच्चा थोड़ा पेन में होगा, तो अगर हम मालिश करेंगे, ज्यादा खिंच गया या उस एरिया पे आपने ज्यादा मालिश किया, तो इट कैन बी पेनफुल.
1: बिल्कुल इंतजार कर सकते हैं. और मैम, एक और चीज है जो आजकल काफी मतलब ट्रेंड में भी है, नाम भी बहुत है, आई थिंक लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, थोड़ी सी जानकारी मैं बहुत उसमें लेना चाहूंगी, ये HPV वैक्सीन क्या है?
0: ये तो बहुत जरूरी है जी. आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट ने ही इस पे बहुत अच्छा एफर्ट किया है. मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अपनी गवर्नमेंट को इस पे. 9 to 14 years ऑफ जो गर्ल्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ये फ्री वैक्सीनेशन हर एक गवर्नमेंट सेंटर पे लगा रही है, जिसको हम गार्डासिल 4 बोलते हैं. इसका सिंगल डोज लगता है और ये हमारी बच्चियों को आगे जाके शादी के बाद, कई पेशेंट्स को तो शादी से पहले भी जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो यूटराइन कैंसर होता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 9 to 14 years ऑफ गर्ल्स पे एक सिंगल डोज वैक्सीन का लग जाता है.
1: ओके, 9 to 14 में, मतलब किसी भी एज में, मतलब एक टाइम लगना है कभी भी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक सिंगल डोज एक ही बारी लगेगा.

0: टू 14 ईयर्स ऑफ गर्ल्स में.
1: ओके एंड दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स, बॉयज की मैं बात करूं तो?
0: नहीं, बॉयज के भी लगता है बट बॉयज के लिए ऑप्शनल होता है. अगर पेरेंट्स लगवाना चाहते हैं वैसे तो गर्ल्स के लिए भी ऑप्शनल है,
1: ठीक
0: बट
1: है.
0: हमारी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है ये सारे गवर्नमेंट सेंटर्स पे.
1: ओके सो एक्चुअली दिस इज प्रिवेंशन फॉर अ सर्वाइकल कैंसर इन फ्यूचर उनके
0: बिल्कुल
1: लिए.
0: बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आज की डेट में.
1: ओके सो बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके, और आप जुड़े आज FM रेनबो के साथ होम स्वीट होम प्रोग्राम में. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमल सेठी गुलाटी मैम.
0: थैंक यू सो मच अच्छा, थैंक यू सो मच.
1: ओके सो ए संजी बच्चा दे मैं पहले क्या डॉक्टर आज साढ़े नाल जुड़े से पेडियोट्रिशन डॉक्टर कमल सिंह गुलाटी, और इन्हों वालों अब देखो वैक्सीनेशन की जानकारी आप लेती है, और जन्म तो लैके 5 साल तक 6 साल तक जो 4 तो 6 वाला भी एक साइकिल चलता है उसके विच भी जरूरी होंगे है एक बूस्टर डोज दी जाती है, और उस तो बाद ये जी इन्होंने गल की है 9 to 14 वाली जी HPV वैक्सीन है ये जाके जे भी थोड़े नज़दीकी अस्पताल ने है ना जी उ जाके लगवा सकते हो, और बहुत जरूरी है बच्चों के लिए तो ये चीज़ बहुत जरूरी है. वैक्सीन कोई भी एज हो बिटवीन 9 to 14 एक बार ही लगनी है, सिंगल शॉट ही लगना है, तो बहुत जरूरी है. हेल्थी देखो हेल्थ की आप बहुत सारी चीज़ों से आप पैसा अपना लगा दें है ना जी, जो हेल्थ की गल आती है ना उदो थोड़ा जहाँ आप इग्नोर कर जाते हैं कि कुछ नहीं होया मैनू ठीक तो हाँ है ना जी. सो छोटे छोटे बच्चों की गल करा तो उन्होंने भी बहुत जरूरी होंगे खास ख्याल रखना. सो वैक्सीनेशन का खास ख्याल रखो, जो भी टाइम है जिस टाइम भी बच्चों को वैक्सीन देनी है तो जिहड़ी वैक्सीन देनी है बकायदा उसका कार्ड भी बनया होंगे वह भी खास ख्याल रखना चाहिए. फिलहाल ख्याल है मैंने तुहाड़ा, अगला गीत इंजॉय करांगे जी, स्टे ट्यून्ड.

सो वंस अगेन वेलकम बैक आजी 102.7 FM रेनबो ते एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम होम स्वीट होम और टाइम तो हुन हो गया है कि बस हौली हौली किचन दे वल पैर जड़े ने वध रहे ने और आज सोचा जा रहा है कि कुछ खास रखा जाए क्योंकि देखो बच्चों की छुट्टी का लास्ट दिन है और कल तो स्कूल खुल रहे हैं है ना अलग अलग डिमांड्स होनगियां उन्हां दियां सो एक चीज़ है जी आप बड़ी ना इंस्टेंट ट्राई कर सकते हैं और हो सकता है बच्चों भी ये चीज़ बड़ी पसंद है खासकर रोटी के नाल तुसीं सब्जी है ना वेजिटेबल के तौर पर तुसीं खा सकते हो बना सकते हो बड़ी स्वाद चीज़ है सो दही वाली जी बूंदी होंगी पकौड़ी होंगी है ना कुछ लोग पकौड़ी कहते हैं कुछ लोग बूंदी कहते हैं हूँ अपनी लैंग्वेज की कुछ कहते हो तुम देखो एक्चुअली जनाब इस चीज़ की भी सब्जी बनती है सिर्फ रायते दे विच नहीं मतलब इसका इस्तेमाल असी कर सकते हैं इसकी सब्जी भी बना सकते हैं बड़ी कमाल के ट्विस्ट के नाल हम देखो करना की है अज भी तुम्हें पता नहीं लग रहा ना कि दोपहर में की बनाइए खास तो बड़ी सिंपल जी चीज़ है जो आप आलू ते प्याज और टमाटर बस इन्हां तीजा तिना चीज़ों के नाल ना ये दही वाली जी पकौड़ी है ना ये सब्जी बना के असी खाइए तो वाह वाह बच्चे याद करेंगे मम्मी बना के देनी है सानू भी टिफिन दे विच ये सब्जी रोज़ तो ट्विस्ट आ गया है ये कि जो आप आलू प्याज से टमाटर हूँ तड़का लगा रहे हैं नॉर्मल मैं गल करा हूँ मैं कोई खास मसाले तुहानू नहीं दस रही किन्नी अमाउंट दे विच लेना ये भी नहीं तुहानू दस रही हाँ जस्ट एक नॉर्मल मसालों के नाल जिमें लाल मिर्च हो गई है ना हल्दी पाउडर हो गया या फिर जीरा पाउडर हो गया जो भी मसाले असी किचन च वरतते हैं सो टमाटर के प्याज नू बारीक बिल्कुल पतला पतला कट करके जिमें कि तड़के दे लई आपां कट करते हैं तड़का लगा के और बिल्कुल बरीक बरीक जिहड़े आलू है ना उन्हां दे भी स्लाइसिस कट करके एक आलू लै लीए शुरुआत के तौर पर एक आलू लै लीए एक प्याज और एक टमाटर निका जिहा बस लै लीए और इन्हां तिन्नां नू जदों आपां तड़का लगा रहे हैं ना कुछ नहीं करना बस सिंपल मसालों के नाल तड़का लगा के ना पानी पा देना जो आप देख रहे हैं कि आलू पक चुके हैं मेरी गलों के नाल मैं इन गल् कर रही हूँ आलू पके ना पके हो सकता है फिलहाल पक जाएंगे सी टेंशन ना लो सो आलू भी पक गए हैं और प्याज टमाटर का मसाला बहुत चंगी तरीके दे नाल भुन गया है ना जी सो पानी पा देना वो थोड़ा जहा शुरुआत दे विच एक आलू एक टमाटर एक प्याज बस ये चीज़ा लैनिया ने और थोड़ा पानी पा के एक तो डेढ़ कोली पानी पा के ना जी दही वाली पकौड़ी है ना बूंदी वो पा देनी है और नाल ही कर देनी है जी गैस बंद बस नज़ारे ला लो सब्जी तो याद रखोगे मैनू रिच आई सी ते आज मैनू नवी जी सब्जी दस के गई है बना के देखना ट्राई करना ते मैनू याद करना।

मुकेश देवास से गाया हुआ एक गीत है और संगीत किना दा है ए आज तुसी जरा इस गीत नु सुन के पहचानो और उस तो बाद उन्हां दी गल बात करांगे क्योंकि उन्हां दे नाल जुड़े होया जी आज दा एक खास दिन सो स्टे ट्यून्ड।

102.7 FM रेनबो और रेनबो के टाइम फिलहाल एक बज चुका है जी और FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ तेज जलंधर ते दोस्त दे नाल नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर दे दोस्त वी इस टाइम साडे नाल जुड़ चुके ने जी बिल्कुल लाइव और इन्हां दा साथ रहेगा जी साडे नाल दोपहर दे 3 बजे तक। सो एक बजते मैनू पता है कि दोस्तों का ना जिहड़ा इंतजार हुंदा ना वो खत्म हो जाता है क्योंकि प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ लैके रिचा एक बार फिर हाजिर है जी और सोहने सोहने मेलोडियस गीत आप इस टाइम सुनांगे ठीक दोपहर के 2 बजे तक। और जिस गीत के नाल मैं अज का ये प्रोग्राम शुरू कर रही हाँ ना आई थिंक बहुत सारे दोस्तों का ना वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट सोंग होना है ना जी। सो

चांद ने आज जमीन पे अपना नूर उतार दिया, तेरे आने से मौसम ने रंग निखार दिया, हवा धीरे से तेरे बाल सुलझाने लगी और मेरे दिल ने ये समा तुझ पे वार दिया।

तुम्हें देख लूं जी भर के बस एक पल भर, थम जाए ये वक्त रुक जाए ये पल बस पल भर, दिल ने मांगा नहीं जन्म जन्म का साथ, बस मिल जाए तेरा प्यार बस पल भर।

तेरी हंसी की गूंज से ही तो महफिल सजती है, तेरी यादों के दिए से ही तो रात जगती है। हर धड़कन तुझे ही बार बार पुकारती है, लबों पे कोई और लफ्ज आता ही नहीं। खुद से भी ये पूछता रहता हूँ, क्यों दुनिया से सब कुछ छुपाता हूँ मैं। सच कहूँ तो दिल में क्या रखा है, तेरा ही तो नाम छुपा रखा है।

रात भर नींद से जंग चले, हर ख्याल में तेरी ही तो तस्वीर ढली। लोग कहते हैं ये दीवानगी है, और मैं कहता था कि नहीं, ये बंदगी है। रोका बहुत दिल को समझाया, पर इश्क से कहाँ कोई जीत पाया। पूछो तो सच यही कहेंगे कि दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए।

कुछ रिश्ते सिर्फ किस्मत से बनते हैं और कुछ चेहरे दुआ बन के संवरते हैं। हम तो तन्हा थे इस भीड़ भरी राह में, तुम मिले तो मौसम बदल गया निगाह में। सबको नसीब कहाँ होती है, सबको नसीब कहाँ होती है वफा की छाओं। कुछ लोग तरसते हैं एक मुस्कान को, सच कहती हूँ ये लफ्ज है मेरे कि खुश नसीब है वो लोग जिन्हें मिली ये बहार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में।

उम्र भर लिखने को अल्फाज ढूंढती रही, हर मोड़ पर तेरा इंतजार ही होता रहा। ख्वाबों के रंग से भरना चाहा था जिसे, पर किस्मत ने हर रंग छीन लिया। वक्त के हाथों में कलम तो थी, मगर कोई कहानी मुकम्मल ना हुई। सच यही है आज भी कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।

जिंदगी से अब शिकवा नहीं करते, टूट कर भी हम बिखरा नहीं करते। दर्द मिले तो हंस के सह लेंगे और जख्म कितने भी गहरे हों हम सह लेंगे। तुम्हारा सोच के ही अब जी लेते हैं, तुम्हारी खुशी में ही खुश रह लेते हैं। पर ये तो बताओ तुम अपने दिल से ज़रा कहना तो कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज इस गल ते जोर दिता है कि खेतीबाड़ी खेतर के विकास तो बिना विकसित भारत का सुपना साकार नहीं हो सकता। भारत ने वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स FATF नूं दहशतगर्दी वित्त पोषण ते मनी लॉन्ड्रिंग खिलाफ़ आलमी लड़ाई का एक लाजमी थम दसदे अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की है। भारत समेत अंतरराष्ट्रीय भाई

ना सिर्फ गल्लां अज एहसास नाल बोलो, दिल दे बंद दरवाजे अज खोलो, शायरी दे रंगां नाल महफिल सजाओ ते मुस्कुराउंदे होए साडे नाल दिल अज शायर प्रोग्राम दे विच जुड़ जाओ। FM बैंड 102.7 ते 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी ट्यून कीता होया दिल आज शायर प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ मैं तुहाडी सारियां दी दोस्त आरजे शाहिन। की तुसी कदे किसी नूं कुछ कहना चाहुंदे सी पर अल्फाज ही नहीं मिले,

मेरे दिल में कुछ यूं बस गए हो तुम कि धीरे धीरे मेरे दिल में कुछ यूं बस गए हो तुम कि मेरी हसरत मेरी चाहत मेरी मोहब्बत बन गए हो तुम। अब लगता नहीं है ये मन कभी भी तुम्हारे बिना कि अब लगता नहीं है ये मन कभी भी तुम्हारे बिना कि मेरा सुकून मेरी आदत मेरी ज़रूरत बन गई हो तुम। प्रोग्राम चल रहा है जी दिल आज शायर है तो दिल आज शायर प्रोग्राम दे विच मैं इत्थे तुहाडी उडीक कर रही हूँ शायरियां दी। किसी भी शायर की जिहड़ी शायरी है तुहानू सुननी पसंद है तुहानू अपने हत्थां दे नाल अपने जिहड़े जज्बात ने तुहानू किताब ते लिखनी पसंद है वरखे ते लिखनी पसंद है वह जिहड़ी शायरी है वह तुसीं सानू भेज सकदे हो। नंबर मैं वार वार तां रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जिहड़े साडे दोस्त ने हुण प्रोग्राम सुन रहे ने ते उहनां वास्ते नंबर है 9855 10 10 27 9855 1010027। फटाफट सानू मैसेज करो।

मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं, कि मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं, ये वो अदा है जिसमें कोई कामयाब नहीं।

जिन्हें पनाह मिली उन्हें कि जिन्हें पनाह मिली उन्हें उंगलियों में गिन लो, जो बर्बाद हुए उनका कोई हिसाब नहीं। मोहब्बत का मतलब सिर्फ किसी नू हासिल कर लेना नहीं हुंदा। कई बार मोहब्बत तो सिर्फ दिल की सब तो खूबसूरत दुआ बन के रह जाती है, जिसनों असी दिलों चाहते हाँ वो हर वार साड़ी किस्मत विच होवे ये जरूरी तो नहीं। कुछ रिश्ते मिलन लई नहीं सगो सानू कुछ सिखाउण लई आउंदे ने। जी वो इंसान साडा ना भी बने फिर भी उसकी खुशी दिलों दुआ निकलती है, यही है मोहब्बत की खूबसूरती। जिवें शायरी दे विच सी, क्योंकि हर कहानी का अंत मिलाप नहीं हुंदा, पर हर सच्ची मोहब्बत दिल नूं कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाती है।

प्रोग्राम तुसे सुन रहे हो दिल आज शायर है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी। हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर नए दिन नया इंतजार आदमी। जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे।

0: सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
1: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
1: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
1: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
1: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनी शब्द से निकला है
1: जी,
0: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए। इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
1: जी।
0: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।

0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे पर खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खोदेंगे पर खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
4: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम। राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए, यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
5: ठीक कहा हाथी तुमने,

0: यही करो, यही करो।
1: ठोकेंगे भाई ठोकेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काओ काओ काओ।
3: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन?
4: कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता।
4: कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
2: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
6: क्या
5: क्या
6: क्या?
2: पूजा सब तक कोयल गाए,
4: मीठा
2: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
0: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
2: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? आ, करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं, काम काम काम काम काम काम काम। ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा, काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है, काम काम काम।
7: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
2: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डटकर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
7: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
2: काँ, काँ, काँ।
8: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया, रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
1: बहु बहु बहु, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
0: अरे
1: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। बहु बहु, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
0: गाँव गाँव गाँव, कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव, शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
2: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
1: इसकी यही सजा हो,
3: इसको यही दंड दो।
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
0: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँ।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
6: भाई? मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
6: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
5: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
5: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
6: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
0: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: भरी आवाज कैसी लग रही है?
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपीहे के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि

0: क्या कह रहा था। आओ कोयल चलो चले
1: चलो
0: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
1: चलो
2: पिए दूजा पानी कब आएगी बरखा।

0: गया?
1: क्या पता?
0: अभी अभी जान है, लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी।
1: अरे
0: पपी है भाई।
2: पानी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली का ये जो समय है दोपहर का समय, ये विशेष होता है क्योंकि इसमें होता है रेडियो डॉक्टर और हम बात करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की। सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर हमारा ये शो चलता है विच इज कॉल्ड रेडियो डॉक्टर। तो आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं रिस्क ऑफ टबैको यूज, तंबाकू के इस्तेमाल के नुकसान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल करीब 80 लाख लोग तंबाकू के कारण होने वाले जानलेवा रोगों का शिकार होते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। तंबाकू और इसके सेवन से होने वाले घातक परिणामों के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष चंद्रा से, हु इज चेयरमैन एंड एचओडी कार्डियोलॉजी बीएलके हॉस्पिटल। डॉक्टर चंद्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
3: धन्यवाद, नमस्कार।
2: सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग से लेकर जो

0: कम पढ़े हैं या नहीं पढ़े वो भी जानते हैं कि तंबाकू के सेवन से क्या क्या नुकसान होते हैं, लेकिन फिर भी इसका सेवन करते हैं सर।
1: जी, तो ये बड़े दुर्भाग्यवश ऐसा सब्सटेंस है तंबाकू जो अब्यूज के दायरे में आता है, और उसका कारण यह है कि ये एडिक्टिव है, और ऑन द फ्लिप साइड ये कार्सिनोजेनिक है, यानी इससे कैंसर्स होते हैं। और मैं तो हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते जानता हूं कि हम जितने यंग हार्ट अटैक्स देखते हैं जो 20-30 की उम्र में हमारे पास आते हैं, उन सब में इनवेरिएबली हिस्ट्री मिलती है कि वो लोग बड़े यंग एज से स्मोक करते रहे, या तो ई सिगरेट्स या कॉमन सिगरेट्स, या तंबाकू च्यू करना बहुत कॉमन है स्पेशली ईस्टर्न यूपी के एरिया में, तो वो सभी इसका शिकार होते हैं। और लंबे अरसे में फिर तरह तरह के कैंसर, जिनमें सबसे प्रमुख है लंग कैंसर, और ये एक हमारे रेवेन्यूज के, हर देश के रेवेन्यू पे एक बहुत बड़ा ड्रेन है कि उनके खजाने खाली हो जाते हैं इस तंबाकू सेवन से, उनकी जो बहुत प्रोडक्टिव जनता है वो मर जाती है। और दूसरी तरफ अगर आप तंबाकू इंडस्ट्री को देखें तो वो लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे ही हमको तंबाकू यूजर्स बढ़ें, हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। तो ये एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद चल रही है सरकार के और इन तंबाकू ग्रो करने वाले बनाने वालों के बीच में। वो चाहते हैं पैसा खूब कमाया जाए, जबकि सरकार चाहती है बड़े से बड़े टैक्स लगा के उसको सप्रेस किया जाए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किए जाएँ, जनता को तरह तरह के कैंपेन से आगाह किया जाए।
0: तो चलिए हम देखते हैं कि आपके तरफ से क्या क्या सवाल आते हैं, और फिलहाल डॉक्टर साहब की पसंद का एक बहुत ही सुरीला गाना, और बता दूं आपको कि डॉक्टर साहब को उदित नारायण, श्रेया घोषाल बहुत पसंद है, और एक और सिंगर आपने
1: मोहम्मद रफी
0: बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए कोशिश करेंगे इन्हीं के गाए गीत आज सुने।

0: जी हाँ दोस्तों, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जिंदगी का जो गुजारा है ना, ये टोबैको के बिना अच्छी तरह से और बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या विवशता हो जाती है कि हम इसके शिकार हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये एक एडिक्शन है, नशा है। एक बार जो शुरू करते हैं तो इसके आदि हो जाते हैं जीवन भर के लिए। डॉक्टर साहब, बात यहाँ पर आती है कि टोबैको की श्रेणी में किन किन चीजों को गिनाया जाता है। सिगरेट्स में टोबैको होता है और किन किन चीजों में होता है, जैसे कि हमारे एक लिसनर ने भी ये जानना चाहा है। मनोहर लाल गांधी जी हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, लिखते हैं कि क्या पान मसाला और जर्दे वाली जो चीजें होती है वो भी क्या इसकी श्रेणी में आते हैं?
1: जी, तो सिगरेट्स, बीड़ी, ई सिगरेट्स जो आजकल के टीन्स बहुत पीते हैं, और सारे तरह के तम्बाकू, यानी सुरती से लेके जर्दा और जो पान मसाला के अंदर तम्बाकू युक्त पान मसाला है, वो सब सब इसी की श्रेणी में आते हैं
0: जी।
1: और देखिए, जो यूज कर रहा है सिर्फ उसको घातक नहीं है, जो उसके परिवार के सदस्य हैं या उसके जो मित्रगण हैं जो उसके आसपास बैठते हैं, और धुआं जब उनके पास पहुंचता है तो उनको पैसिव स्मोकर्स कहलाते हैं वो लोग, इवन वो लोग इसके शिकार हैं। तो हम पूरे समाज को सावधान रहना है कि सिर्फ स्मोकर्स एंड टोबैको च्यूअर्स ही नहीं, आसपास की फैमिली मेंबर्स और उनके मित्रगण भी उससे इफेक्ट होते हैं
0: जी। तो गांधी साहब ने यह भी कहा है कि तरह तरह के गुटके हर चौराहे वाली गली पर जो है लटके हुए देखे जा सकते हैं। तो ये गुटका किन किन बीमारियों को दावत देता है?
1: जी, तो इस गुटके में दो तरह के गुटके हैं, एक तो तम्बाकू युक्त है, एक बिना तम्बाकू के हैं। तो जो बिना तम्बाकू वाले गुटके हैं उनमें सुपारी होने से, लगातार खाते रहने से सुपारी आपके मुंह में इरिटेशन करके वो जीभ के और मुंह के कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है बिना तम्बाकू के भी। और जो तम्बाकू वाले गुटके हैं वो इस इरिटेंट कैंसर्स के अलावा जब अंदर उसकी पीक जाती है शरीर में, तो वो तरह तरह के कैंसर, जैसे लंग कैंसर सबसे प्रमुख है, और लंग कैंसर से आज लगभग 18 से 20 लाख पूरे विश्व में मरते हैं हर साल में, तो एक बहुत बड़ी तादाद है। तो दोनों तरह के गुटके घातक हैं, खास तौर से तम्बाकू युक्त गुटके
0: जी। सुनील कुशवाहा जी हैं उन्नाव से, लिखते हैं कि इनके पापा के हार्ट की एक नस जो है ब्लॉक हो गई है, लेकिन तम्बाकू खाना नहीं बंद कर रहे हैं।
1: तो ये तो बहुत मुझे दया आती है इनके पापा के ऊपर, परिवार पे। इन लोगों को हम एक तरह का हेट्रेड इनके खिलाफ क्रिएट ना करके हम उनको दया का पात्र माने, और क्योंकि वो इसके एडिक्शन से पीड़ित हैं इसलिए इसको छुड़वाना बहुत आवश्यक है। और इनके पापा को जान लेना चाहिए कि अगर ये तम्बाकू सेवन करते रहे और उस हार्ट की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास भी हो चुका है, तो जो बाकी नसें बची हैं उन सब में नए ब्लॉक्स आना शुरू होंगे और उनको बार बार हार्ट अटैक्स होते रहेंगे, इसलिए तम्बाकू पूरी तरह से छोड़ना बहुत आवश्यक।
0: तो डॉक्टर साहब ये लिखते हैं कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं इनके परिवार वाले, तो ऐसी स्थिति में परिवार वालों को क्या कोशिश करनी चाहिए?
1: परिवार वालों का दायित्व यह है कि उसको ह्यूमिलेट न करें मरीज को, और उनको तरह तरह के रास्ते दिखाएं कि किस तरह से आप इसे छोड़ सकते हैं। आपका डिटर्मिनेशन बहुत मायने रखता है इसमें, तरह तरह के आसन हैं श्वास के जो हेल्प कर सकते हैं, और कुछ निकोटेक्स या च्युइंगम्स इस तरह की, या कुछ दवाइयां टेबलेट्स भी आती हैं जिससे कि हम तम्बाकू के खिलाफ डिस्टेस्ट पैदा कर सकते हैं मरीज में, और वो मरीज उसको छोड़ सकता है, और ये संभव है पूरी तरह से। हमारे बहुत से लोग तम्बाकू छोड़ देते हैं बाय देयर शियर विल पावर, इट इज पॉसिबल।
0: और अगर इससे भी काम ना चले तो किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये एडिक्शन सेंटर्स हैं, वहां इनकी मदद मिलती है और पूरी तरह से ये ठीक हो जाते हैं।
0: हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए साहब।
2: नमस्कार नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार। अरे डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं।
1: बोलिए
2: डॉक्टर साहब, हम बहुत परेशान हैं। 24 घंटे में 7 बीड़ी हम पीते हैं, और ये हम छोड़ना चाहते हैं, कोई आसान तरकीब बताने की जहमत गवारा करें।
1: तो बहुत अच्छा है कि आपने निश्चित कर लिया है कि आप छोड़ेंगे इसको, और आप जरूर सफल होंगे इसमें। इसके

0: लिए तरह तरह की दवाइयां या च्युइंगम्स आती हैं, निकोटेक्स च्युइंगम होती है या सिंपल सौंफ या इलायची है, जब भी आपको तलब लगती है तो वो मुंह में रख सकते हैं और डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और आपकी बीड़ी पूरी तरह से छोड़वा देंगे। एक बीड़ी लेना भी आपके लिए घातक है, इसलिए जितना जल्दी छोड़ दें आपके लिए अच्छा है।
1: जी तो जितना जल्दी छोड़ दें आपके लिए अच्छा है, और आज ही ये संकल्प ले लीजिए, आज ही ये संकल्प ले लीजिए कि बीड़ी पीना छोड़ देंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो डॉक्टर साहब, अरुण सहानी जी हैं दरभंगा बिहार से, इन्होंने भी लिखा है कि तंबाकू सेवन छुड़ाने का आसान तरीका क्या है, तो अभी आपने कुछ तरीके बताए। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि कैसे छोड़ा जा सकता है, तो बीच बीच में हम बताते ही रहेंगे कि कैसे तंबाकू से मुक्ति पाई जा सकती है। एक और कॉलर है, हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: हाँ नमस्ते मैम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्ते गुरविंदर जी,
2: बोलिए। हाँ सर को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, ये तंबाकू तो ऐसी बीमारी है जो जानलेवा भी है, तो इसके उत्पादन और इसकी सेल पर संपूर्ण बैन क्यों नहीं लगा दिया जाता है? तंबाकू जो है तो इस पर भी कोई कानून बना दिया जाए तो ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
0: मैं इसी पे चर्चा करने लगा था कि जो हमारे किसान भाई हैं और जो अपनी धरती में तंबाकू उगाते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि तंबाकू उगाने में कितना उसका जो गैस है उसकी वो कितनी पीड़ित करती है लोगों को, जो उसमें इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही फ्रिजाइल क्रॉप होती है, उसमें इंसेक्टिसाइड बहुत प्रचुर मात्रा में यूज़ किए जाते हैं, वो कितने घातक होते हैं, साथ में जो छोटे छोटे बच्चे और यंग नौजवान उस खेती में काम करते हैं उन सब पे इसका असर होता है। और ये क्रॉप ऐसी है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हमारे वातावरण में बहुत अधिक लेवल पे होता है, तो इसके जो परिणाम हैं, दुष्परिणाम जो हैं, वो बहुत दूर तक जाते हैं। और इसको सरकार साल दर साल इस पे टैक्सेस और रेवेन्यू पे टैक्सेस बढ़ाती जाती है, सिर्फ इसलिए जिससे कि तंबाकू ना बिके। टैक्स बढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि वो चाहते नहीं है कि तंबाकू बाजार में एग्जिस्ट करे, और इसके लिए ग्लोबल वर्ल्ड के लेवल पे मुहिम चल रही है ई सिगरेट्स को बैन करने की, पब्लिक प्लेसेस में तंबाकू और सिगरेट को बैन करने की। कई स्टेट्स ने तो फाइन तक इशू कर दिए हैं कि कोई भी मनुष्य पाया गया अगर ऑफिस में या पब्लिक प्लेस पे पीता हुआ सिगरेट, तो उस पर एक बहुत भारी जुर्माना लगेगा और जेल भी हो सकती है। तो ये सब ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे कि हम शायद इस पे विजय पा सकें।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, और आपके लिए शुभकामनाएं। आपने इस प्रोग्राम के जरिए प्रयास किया है 1-2% लोग भी इसका सेवन बंद कर दें तो आपकी सक्सेस होगी। धन्यवाद सुजाता मैडम, नमस्कार।
1: थैंक यू। तो सर ये ई सिगरेट क्या है?
0: ये ई सिगरेट ये है कि उससे कोशिश ये करते हैं कि वातावरण में उसका असर ना हो, धुआं बहुत नजर ना आए और हाथ में लेके वो बिना धुए के उसको घूमते रहें, मगर इसके जो घातक परिणाम बिल्कुल नॉर्मल सिगरेट के बराबर होते हैं। ये एक गलत धारणा है कि ई सिगरेट पीने से शरीर को नुकसान कम होगा या वातावरण कम दूषित होगा, इसके परिणाम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आम सिगरेट के और उसके होते हैं। और ये यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है आजकल, क्योंकि ये एडिक्टिव है और नशा इससे बराबर होता है, तो वो लगातार ई सिगरेट वाले पीते रहते हैं इसको पब्लिक प्लेसेस में।
1: और कुछ स्टाइल स्टेटमेंट भी माना जाता है,
0: और एक ये हाँ एक ये फैड माना जाता है कि जैसे अच्छे से बाल बना लिए, अच्छी सी ड्रेस पहन ली, हाथ में ई सिगरेट लेके घूमेंगे, तो ये भी एक फैड है।
1: चलिए, इस पर भी और बातें होंगी। और ज्यादातर हमारे लिसनर्स सर यही पूछ रहे हैं कि मैं गुटखे की लत से परेशान हूँ, सिगरेट की लत से परेशान हूँ, कैसे छोड़ा जा सकता है। ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है कि उनमें अवेयरनेस है कि वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे।
0: इसके डेडिकेटेड एडिक्शन सेंटर्स बने हैं, उन पे जाके मदद लें और जरूर कामयाब होंगे लोग। जी
1: तो चलिए अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर साहब के पसंद का ये गाना जो श्रेया घोषाल की आवाज में है।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और आज का रेडियो डॉक्टर वाकई में विशेष है क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उस चेयरमैन एंड एचओडी कार्डियोलॉजी, और मैं हूं साथ में सुजाता रथ। तो डॉक्टर साहब, आप कार्डियोलॉजी से संबंध रखते हैं, हार्ट से संबंध रखते हैं, तो आपने अभी अभी बताया कि तंबाकू सेवन के कारण हृदय रोग बहुत होते हैं और खास करके जो हमारी यंग जनरेशन है। तो सर, ये जो यंग जनरेशन में अगर हृदय रोग का वो शिकार हो रहे हैं स्पेशली ड्यू टू टोबैको इनटेक, तो उनकी स्क्रीनिंग कैसे होनी चाहिए?
2: ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसा मैंने शुरू से कहा है कि

0: जो भारतवर्ष में यंग हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है, यहाँ हार्ट अटैक्स लगभग एक दशक पहले होते हैं पाश्चात्य देशों के मुकाबले, और उनमें सबसे प्रमुख कारण टोबैको अब्यूज है, क्योंकि जो अगर 10 हार्ट अटैक के मरीज 30 से 40 की उम्र के आते हैं तो उनमें कम से कम 6-7 लोगों में टोबैको की हिस्ट्री मिलती है, तो तम्बाकू च्यू करते हैं या वो बीड़ी या सिगरेट पीते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग इनमें से जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो सकते हैं, जिनके पेरेंट्स को एक यंग एज में हार्ट अटैक्स हुए हों, या इनकी खान पान की शैली और इनका वजन या लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे मुख्य कारण हैं जो जुड़ के यंग लोगों में हार्ट अटैक पैदा करते हैं। लेकिन तम्बाकू सेवन एक ऐसा कारण है जिसको हम अपनी स्वेच्छा से हटा सकते हैं। इट इज़ ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड दैट शुड बी इरेज्ड आउट फर्स्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल द रिस्क फैक्टर्स बिसाइड्स द अनमॉडिफाइबल वंस। जैसे किसी को जेनेटिक हिस्ट्री है या कोई डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर है, तो तम्बाकू उस श्रेणी में सबसे ऊपर है जिसको आप अपने हाथ से हटा सकते हैं और एक बहुत हद तक यंग हार्ट अटैक्स के लोग बच सकते हैं इससे। मैंने, आप कल्पना करिए, मैंने इतने छोटे एक 13 साल के बच्चे की एंजियोप्लास्टी की हुई है, और जब उसको पूछा कि क्यों हुआ तुमको, उसकी आर्टरीज साफ थी, एक आर्टरी में ब्लॉक था, तो बताया गया कि करीब 7-8 साल की उम्र से वो बीड़ी पीता था।
1: अच्छा।
0: और वो किसी आंचलिक गांव के क्षेत्र से था, और देखिए बीड़ी के परिणाम देखिए कि उस 13 साल के बच्चे को, कितने युवकों की शादियां नहीं हुई हैं उससे पहले उनको हार्ट अटैक हो चुके हैं, और अब जब ठीक हो गए एंजियोप्लास्टी करा के, तो वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारा आगे जीवन कैसे व्यतीत होगा। तो तम्बाकू बहुत घातक है, मेरी दरखास्त है लोगों से कि छोड़ें इसको।
1: जी हेलो,
2: जी नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ।
1: जी जी राजा साहब बोलिए।
2: जी जी, बड़ा अच्छा आज का टॉपिक है तम्बाकू के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हमारा ये प्रश्न है आपसे कि जैसे हम लोग तो तम्बाकू नहीं खाते, उसका बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, लेकिन सर जो हमारे सफर करने में या हमारे आस पड़ोस में बहुत लोग सिगरेट बीड़ी गुटखा खाते हैं, तो क्या उनके जो बीड़ी पीते हैं सिगरेट पीते हैं उनका धुआं जो निकलता है, क्या वो भी हम लोगों के लिए नुकसानदेह होता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छा सवाल उठाया। इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, यानी कि हम खुद स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन हम आसपास के जो स्मोकर्स हैं उनसे निकला हुआ धुआं सूंघ तो रहे हैं हम, और वो हमारे फेफड़ों में जा रहा है, तो उसके परिणाम भी उतने घातक होते हैं जितने पीने वाले को हैं। और इस पैसिव स्मोकिंग की प्रक्रिया से बहुत से परिवार के लोग भी पीड़ित होते हैं, जो मैं बीमारी की चर्चा कर रहा हूं, तो इससे बचना चाहिए, बहुत आवश्यक।
2: जी जी मैम, आपका बहुत धन्यवाद मैम।
1: थैंक यू राजा साहब। त्रिलोकचन सोनी जी का ये मैसेज हम ले सकते हैं, उत्तराखंड टेरे गढ़वाल से है। सर, इन्होंने लिखा है कि गांव के बुजुर्गों का मानना है कि जो हम हुक्का से तंबाकू पीते हैं वो उतना हानिकारक नहीं होता है क्योंकि वो फिल्टर होकर आता है, क्या ये सही है?
0: ये बिल्कुल गलत धारणा है। सिगरेट में भी तो फिल्टर लगाते हैं जहाँ पे हम पीते हैं उसको, और तम्बाकू जो गुटके में उसमें यूज होता है हुक्के में, वो बिल्कुल उतना ही घातक है। और आजकल के जो नवयुवक क्लब्स में जाते हैं और वहाँ शीशा और तरह तरह के हुक्का पीने की जो रिवाज है वो भी उतना ही घातक है।
1: उसमें जो फैशन ट्रेंड बन गया है कि हर जगह हुक्का जो है अलग से रखा जाता है।
0: एक तो हम पॉल्यूशन की मार से ऐसे ही पीड़ित हैं, और ऊपर से ये शीशा और हुक्का लेके हम अपने लंग्स में धुआं इकट्ठा करते हैं, तो ये लोग कैंसर तो एक चीज है, उससे पहले ये ब्रोंकियल एस्थमा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इन सब डिसीजों से पीड़ित होते हैं, तो इसके परिणाम तो बहुत दूरगामी हैं और इससे जहां तक हो सके बचना चाहिए।
1: जी, तो त्रिलोक चंद्र सोनी जी का ये मैसेज मैंने लिया जो अभी अधूरा है, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से। इन्होंने ऐसा लिखा है, इनको कोई प्रॉब्लम है कि ये बीड़ी सिगरेट दारू कुछ नहीं पीते, लेकिन कुछ दिनों से इनका सिर जो है घूम रहा है, चक्कर आने जैसा लगता है और दर्द होता है, विशेषकर कनपटी में, और दाहिनी तरफ छाती में जलन भी होती है, तो इन्हें क्या करना चाहिए?
0: ये इस प्रोग्राम से हटके सवाल है, लेकिन इनको पता है हम हृदय रोग विशेषज्ञ, इसलिए सवाल किया
1: जी,
0: है।
1: जी,
0: तो इसमें इनको जांच करानी चाहिए, खासतौर से ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण ये हो सकते हैं कि सिर में दर्द हो, और जो नीचे भुजा में या सीने में दर्द है उसके लिए हार्ट के चेकअप से कराने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप स्मोकिंग या टोबैको नहीं यूज करते तो हार्ट डिसीज से आप बचे हुए हैं, और कई कारण हो सकते हैं जिससे हार्ट डिसीज हो सकती है, तो उसको चेकअप कराना चाहिए इनको।
1: जी, तो कुछ कॉलर्स वेट कर रहे हैं लेकिन इनकी कॉल्स हम बाद में लेंगे, तो चलिए अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: डॉक्टर साहब, कि हमारे जो यंगस्टर्स इनका शिकार हो जाते हैं, खास करके स्कूलों में जो ये चलन चल जाता है, छुप छुपा के जो शुरुआत हो जाती है बच्चों में, यूथ में टोबैको सेवन की, तो सर लक्षण क्या है? ये जो यूथ पीने लगते हैं तंबाकू का सेवन करने लगे, तो ये किन लक्षणों से जो उनके पेरेंट्स या अभिभावक हैं जो ये पहचान करें?
1: या घर में अभिभावकों को ये भांपना बड़ा आसान हो जाता है अगर बच्चे के आसपास बैठते हैं या उसमें ऐसे लक्षण देखते हैं कि उसके होंठ काले हैं या उसके मसूड़ों पे कुछ रंग चेंज हो रहा है या दांतों में चेंज हो रहा है और उसके पास बैठने से स्मेल आती है जो कि छुपा नहीं सकते, तो वो ज़रूर इस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं कि उनका बच्चा जो है स्कूल में सिगरेट पी के आता है या गलत उसमें पड़ गया है। तो इस पर बहुत गौर करना।

0: चाहिए, बच्चों के साथ बैठना चाहिए, बच्चों से कनेक्ट करना बहुत आवश्यक है,
1: बहुत
0: जो
1: कि
0: दुर्भाग्यवश छूट रहा है आजकल।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, अगर अब ऐसे अगर माता पिता को पता भी चल गया कि ये बच्चे जो है गलत संगत में है और तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मतलब रैशली उनको बोल नहीं सकते, तो कैसा रवैया होना चाहिए उनका?
0: शुरू में तो माँ बाप का रोल है कि एज ए डिसिप्लिनरियन उनको कड़क वार्निंग देनी चाहिए और थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए, और जो लोग बहुत एडवांस्ड लत में पीड़ित हैं उनको प्रति तो आप सिर्फ एम्पेथाइज कर सकते हैं, कंपैशन दिखा सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे, हम चलते हैं किसी डी एडिक्शन सेंटर पे या डॉक्टर के पास और हम कोशिश करते हैं पूरी छुड़वाने की, लेकिन आप इसका प्रण करो कि हम छोड़ेंगे इसको, क्योंकि ये लंबे अरसे में बहुत घातक होने वाला है
1: जी। और इसमें स्कूल्स का क्या रोल होना चाहिए?
0: स्कूल्स का रोल बहुत आवश्यक है। स्कूल्स में तरह तरह पर एजुकेशनल प्रोग्राम कर सकते हैं, समय समय पर वो लोग बुला के स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर्स को, और उन स्टूडेंट्स को आगाह कराएं कि देखिए अगर ये सेवन करेंगे आप तो आप किन किन बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कैसे घट सकती है और प्रोडक्टिव ईयर्स लाइफ के कैसे वेस्ट हो जाते हैं इससे, और ये बिल्कुल फायदे की चीज नहीं।
1: तो टोबैको से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, हमारी जो धरती है वो भी विनाश की ओर बढ़ती जाती है, तो इस बारे में भी हम बहुत सारी बातें जानेंगे। लेकिन कुछ कॉलर्स हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, अदरवाइज लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: सुजाता रथ मैडम जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
1: नमस्कार रघुविंदर जी, पूछिए।
2: डॉक्टर सुभाष जी को भी सादर प्रणाम।
0: नमस्कार चड्डा साहब।
2: डॉक्टर साहब, मैंने देखा है पहले तो सिर्फ मेल ही सिगरेट पीते थे, अब फीमेल ने भी पीना शुरू कर दिया है। कि अगर कोई वुमन जो प्रेग्नेंट है वो चेन स्मोकर है तो उसको कितनी दिक्कत हो सकती है और होने वाले बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कृपया बताने का कष्ट करें।
0: चड्डा साहब, ये साइंटिफिक प्रूफ है कि जो वुमेन सिगरेट पीती है और प्रेगनेंसी के दौरान पीती रहती हैं उनके बच्चों का आकार छोटा होता है, उनके मिसकैरेजेस ज़्यादा होते हैं और स्मॉल बेबीज पैदा होते हैं, जो उनके वो खुद तो परेशान है ही, उनकी जो प्रोजेनी है वो आगे तक परेशान रहती है, वो स्वस्थ प्रोजेनी नहीं होती है, इसलिए उनको सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज को।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सुजाता मैडम, जय हिंद।
1: सर रघुविंदर जी की बात से याद है कि महिलाओं में तंबाकू सेवन से जो नुकसान होते हैं, कुछ तो आपने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो स्मोक करती है तो उसके जो आगे चलकर बच्चे पर प्रभाव पड़ते हैं, अदरवाइज भी क्या, जो क्योंकि महिलाओं की जो बायोलॉजिकल जो उनका डॉल है वो एनाटॉमी है वो डिफरेंट होती है, तो उस पर असर पड़ता है?
0: बिल्कुल, महिलाओं के अंग आमतौर से पुरुषों के मुकाबले छोटे होते हैं, लंग्स छोटे होते हैं, हार्ट छोटा होता है, और उसी तादाद में अगर स्मोक या तंबाकू सेवन करेंगी तो आप कल्पना कीजिए कि उन पे इसका असर अधिक होगा पुरुषों के मुकाबले, और महिलाओं की कैपेसिटी हर चीज में कम होती है, इवन शराब पीने की कैपेसिटी की लिमिट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए कम आंकी गई हैं, अब वही चीज सिगरेट पे अप्लाई होती है। तो जो महिलाएं क्रोनिक चेन स्मोकर्स हैं, और मैं देखता हूँ जर्नलिज्म में, आईटी में और तरह तरह के फील्ड्स में बहुत महिलाएं सिगरेट पीती हैं, और इसको डिस्करेज करना चाहिए, एक अच्छी बात नहीं, ये गलत ट्रेंड है।
1: तो ये गलत ट्रेंड है, वैसे तो हम सिगरेट पीना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, दिस इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग ट्रेंड, वेदर महिलाएं हैं या पुरुष है, सभी के लिए
0: जी,
1: ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है।
0: सुजाता जी, इस पे सरकारें ये चाहती हैं पूरे विश्व में, अफ्रीका, अमेरिका या यूरोप और अपने साउथ ईस्ट एशिया में, कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाए बाकी तरह की कैश क्रॉप्स उगाने के लिए। उनकी धारणा है कि हमारी तंबाकू की क्रॉप जो है बहुत पैसा हमको देती है, तो उसके अल्टरनेटिव जो हैं कैश क्रॉप में गन्ना है, तरह तरह के फल हैं, ये सब उनको एनकरेज करना चाहिए उगाने के लिए। उनको ये जानना जरूरी है कि तंबाकू उगाने में जितना नुकसान पूरे परिवार को या वर्कफोर्स को होता है उनकी फ्यूम से, इंसेक्टिसाइड से, वो बहुत दूरगामी है उसके दुष्परिणाम जो हैं, इसलिए इसको डिस्करेज करें, और आपकी धरती बंजर हो जाती है। तंबाकू की क्रॉप रोटेशन के 3-4 क्रॉप्स के बाद ही धरती आपकी की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। दूसरी तरफ आप देखिए, एक 300 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ काटना पड़ता है। सिगरेट ऐसे ही नहीं बनती, सिगरेट के जो अवयव हैं वो पेड़ों से आते हैं, और अगर इस रफ्तार का डिफॉरेस्टेशन होगा तो आप देखिए हम वैसे ही एनवायरमेंटल हैवक की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इस स्केल पे है, जो स्मोकर्स हैं वो लगातार धुएं निकालने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उनसे बहुत

0: करती है, तो ये दूषित करती है। तो तंबाकू को तो हर स्केल पे आपको डिस्करेज करना है, चाहे उसके लिए आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़े, चाहे लॉ लाना पड़े, या टैक्सेस बहुत बढ़ाने पड़े, कोई एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से बैन कर दीजिएगा, तरह तरह के जो उनके दुष्परिणाम हैं उनको दिखाइए लोगों को, पब्लिक को, कि कैंसर से किस तरह से मौतें होती हैं, हार्ट अटैक्स प्रीमेच्योर कितने कॉमन है स्मोकिंग और टोबैको की वजह से। ये कैंपेन चलना चाहिए और ये चल भी रहा है बहुत एक ऊंचे लेवल पे।
1: तो सिर्फ शरीर पर ही दुष्परिणाम नहीं पड़ते हैं, बल्कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो आबो हवा है, वो सब तंबाकू की वजह से दूषित होते हैं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और सर की पसंद का एक और गाना, और ये गाना थोड़ा सा हटकर है डॉक्टर साहब, एक गजल है
0: जी।
1: सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म गमन से।
0: जी जी जी, जी। जी।

0: पसंद की गजल हमने सुने। बहुत दिनों के बाद ये गजल सुनने में आई। और रफ साहब, हम देखते हैं कि जब भी इंसान परेशान होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो वो ऑल्टरनेट रास्तों को ढूंढता है, उनमें भी एक तंबाकू उनमें से एक है, लेकिन म्यूजिक की तरफ बढ़ सकता है। तो म्यूजिक से अच्छा मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, मेरी पर्सनल राय है ये। तो सब एक मैसेज है प्रमुख कुमार गौतम जी का फ्रॉम लुधियाना। लिखते हैं कि इनकी उम्र जो है 25 साल है, सोते समय अचानक से सांस रुक जाती है और नींद खुल जाती है। लिखते हैं कि मैं गुटखा खाता हूँ, कहीं गुटखे की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है?
1: ये लक्षण आमतौर से जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, या जिनको खराटे बहुत आते हैं सोने के वक्त, उनमें होता है। इसको हम टिपिकली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, यानी सोते सोते सांस मुश्किल से आएगी और अचानक से रुक जाएगी और वो छटपटा के उठ के बैठ जाएंगे। तो उनको अपनी जांचें एक रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट से करानी चाहिए, और गुटखा इसका प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि गुटखा लगातार खाने से इसके जो बारीक कण हैं, पार्टिकल्स, वो लंग में जमा हो जाते हैं और लंग्स की जो कैपेसिटी है डिफ्यूजन की, ऑक्सीजनेशन की, वो सफर करती है, और ये एक लक्षण उसका हो सकता है। तो उनको एक रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए।
0: जी, कौलेश्वर ठाकुर जी गांव लातेहार झारखंड से लिखते हैं कि तंबाकू चाहे सस्ते हो या महंगे, उनमें उतनी ही मात्रा में खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: बिल्कुल, तंबाकू जहर जहर ही है, और चाहे वो सिगार है या सिगरेट है या बीड़ी है या च्यूइंग टोबैको है, ई सिगरेट्स हैं, सभी घातक हैं, सब एक कैटेगरी मारती है मेरे लिहाज से। तो
0: जी सर, आपने बहुत अच्छा एक डिवीजन किया, बीड़ी से लेकर सिगरेट एंड देन सिगार एंड देन नाउ ई सिगरेट
1: और हुक्का।
0: हुक्का
1: जी।
0: तो सर, ये मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे होती है? आपने बताया कि 13 साल का एक बच्चा जिसकी हार्ट सर्जरी हुई, उसने बचपन में इसको शुरू कर दिया था बीड़ी पीना, लेकिन कैसे, किन परिस्थितियों में बच्चा जो है, चाहे स्कूल में हो कॉलेज में, शुरू कर देता है इसको?
1: वो बच्चा किसी गांव का, दिल्ली के पास गांव है, उनमें से था, और मुझे लगता है किसानों के परिवार से था, और घर में ज़रूर सब लोग बीड़ी पीते होंगे, और वहीं से उस बच्चे ने चुना। और वो एक दिन स्कूल में खो खो खेल रहा था, उस दौरान अचानक से सीने में दर्द हुआ, मूर्छित हुआ वो, और अस्पताल लाया गया उसको, और उसकी जो सबसे प्रमुख आर्टरी थी एलईडी, उसमें एक ब्लॉक था जिसको साफ किया गया। जब हिस्ट्री पूछी गई तो पता लगा कि वो तो पिछले 4-5 साल से बीड़ी पीता था। तो ये मैंने एक दृष्टांत दिया कि इससे लोगों को आगाह होना चाहिए कि किस तरह से स्मोकिंग आपको कितनी जल्दी उम्र में हार्म कर सकती है।
0: जी, तो वैसे नॉर्मली जो आजकल हम स्कूलों में देखते हैं कि बच्चे पीना शुरू कर देते, तो शुरुआत कहाँ से
1: हो? शुरुआत होती है मैडम, ऐसा मेरा मानना है, शायद एक तरह का फैड है, मुंह से धुआं निकलना बच्चों की एक फैंटेसी है, बड़े बड़े लोग देखते हैं उनके मुंह से निकलता अच्छा लगता है, तो वो, और जब ये 2-4-6 सिलसिला शुरू होता है तो एक एडिक्शन पैदा हो जाता है, एक लत होती है कि इसका इफेक्ट अच्छा आता है, दिमाग घूमता है, लाइट हेडेड फील करते हैं, और ये एक एडिक्शन बन जाता है। मेरे ख्याल से तो ऐसी इसकी प्रोसेस है।
0: ओके, अब बच्चे जो शुरू करते हैं उनको, उनसे पूछने पर पता चलेगा कि
1: हाउ डिड दे स्टार्ट।
0: तो हम आखिर में बात करेंगे क्विट करने के ऊपर कि कैसे इसे बचा जा सकता है, कैसे छोड़ा जा सकता है। कुछ कॉलर्स को ले लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: हाँ जी, नमस्कार, बताइए
2: सर। सर को भी नमस्कार जी।
1: नमस्ते
2: सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आजकल युवा वर्ग जो है तो का बार की तरफ जा रहा है, और गांव में थोड़ी ये भी धारणा है जी कि हुक्का कम नुकसान देता है, क्या ये सही है जी?
1: ये गलत है साहब, सिर्फ ये जानने से कि घोटके में नीचे पानी होता है और वो छन छन के आपके मुंह में आता है, ये बिल्कुल गलत है। जो निकोटीन के और तंबाकू के दुष्परिणाम है वो पूरी तरह से आपको प्रभावित करते हैं, हुक्के के अंदर भी, जैसे कि वो सिगरेट में प्रभावित करते हैं।
0: जी, थैंक यू कॉल करने के लिए।
2: और
0: इस तरह के डॉक्टर साहब बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो भ्रांतियां हैं कि हुक्का पीना उतना नुकसानदेह नहीं है, तो डॉक्टर साहब अच्छे से बता रहे हैं कि उतना ही नुकसानदेह है जितना कि सिगरेट, बीड़ी, सिगार या ई सिगरेट पीने से नुकसान होता है। हेलो,
3: हाँ नमस्कार जी।
0: हाँ नमस्कार,
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्ते जी।
3: डॉक्टर साहब, मैं कम से कम 45 ईयर से सिगरेट पी रहा था, कोरोना काल आया तभी बड़े लॉकडाउन में सिगरेट की ब्लैकिंग चल रही, 100 रुपए का पैकेट 300 रुपए में, तभी मैंने थाम लिया कि आज

0: नहीं पीने का, तो मैंने सिगरेट छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी सिगरेट। तब से कभी अभी तक पिया भी नहीं, तो मुझे अच्छा लगा आज का प्रोग्राम।
1: तो मैं सबको
0: मैं तो सबको बोलूंगा, आपने जितने भी सुनने वाले लोग हैं, कि छोड़ना कोई भी इतने आसान कोई बात नहीं, हमने दिल में थाम दिया तो छूट जाती है।
1: बहुत अच्छा।
2: तो हम चाहेंगे आप बताइए कि आपने कैसे छोड़ा इसको।
0: मैं जब स्कूल पढ़ रहा था तभी से पी रहा था, तो अभी तक पी रहा था। तभी जब ये कोरोना काल में आया, तभी उसका वो सिगरेट तम्बाकू ये सब ब्लैक में चल रही थी। उसका बहुत जो 10 रुपए की सिगरेट थी वो 30-40-50 रुपए में मिल रही थी पैकेट, 100 रुपए का 300-400 रुपए में मिल रहा था। पहले इतना फालतू चीज यानी फालतू बातचीत के लिए इतना पैसा क्यों बर्बाद करे हमारा, जिंदगी भी बर्बाद होती है पैसा भी बर्बाद होता है।
2: चलिए बहुत तो अच्छा लगा आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। आपको कभी दोबारा मन नहीं किया?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती से भी वापस पकड़ के आप मुंह में डाला है ऐसा कुछ नहीं।
2: चलिए
0: बिल्कुल नहीं,
2: आपकी जो कहानी है ना वो लोगों को प्रेरणा देगी जो छोड़ना चाहते हैं बीड़ी सिगरेट।
1: जी, जी, जी।
0: नहीं नहीं बिल्कुल छोड़ दिया, आपने दिन में थाम दिया ना कि ये नहीं ठीक नहीं करना तो नहीं होता है।
1: बहुत अच्छा,
0: बहुत अच्छा। आज का कार्यक्रम जो आप बता रहे बहुत अच्छा लगा,
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद धन्यवाद। जी एस चत्तर साहब ने भी कहा है सर कि आज का प्रोग्राम सुन के लोगों को सबक लेना चाहिए कि तंबाकू के धुएं को त्याग कर गरम गरम दूध पीकर सेहत बनाएंगे। थैंक यू जी एस चत्तर साहब जी। एक और कॉलर ले लेते हैं। हेलो,
3: नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार, नमस्कार बोलिए।
3: मैं नेपाल से सुरेश बात कर रहा हूँ और इस समय आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ
2: जी।
3: और सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं 11वीं कक्षा में अध्ययनरत स्टूडेंट हूँ और मेरे को ये सिगरेट बीड़ी ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती है, मगर मेरा संगत मेरे ये ऐसे दोस्तों के साथ है जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं। और सर आप मुझे सुझाव दीजिए, राय दीजिए कि इस मोड की अवस्था में मेरे को क्या करना चाहिए।
1: आपको ऐसे दोस्त चुनने चाहिए जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, आप उनकी संगत में रहें और इन लोगों से दूर रहें। ये इन लोगों के लिए एक सबक होगा कि हमारा इतना अच्छा दोस्त सिगरेट बीड़ी की वजह से हमसे दूर चला गया। तो इन लोगों को त्याग दीजिए और अच्छे दोस्त चुनिए और उनको सलाह दीजिए, उनको कंपैशन सिंपैथी करिए उनके प्रति कि भाई इसको छोड़ दो, ये ठीक नहीं है और तुमको तो नुकसान होता ही, आपके आसपास वाले भी इससे अनईजी हो जाते हैं, इसलिए छोड़ दीजिए आप। मैं तो यही कह पाऊंगा आपसे।
3: इतनी अच्छी सुझाव दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते। नेपाल से कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आसपास की बात आई डॉक्टर साहब, तो एक मैसेज है कि डू द सूरज यादव का, डू द स्मोक ऑफ सिगरेट अफेक्ट सराउंडिंग पीपल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10-15 meters। लिखा है कि आई एम नॉट अ स्मोकर बट आई गेट इरिटेटेड व्हेन नियर बाय पीपल स्मोक।
1: या आई कैन रिलेट विद हिम। Those who are not smoking, वो जरा से धुएं की स्मेल से भी बहुत अनईजी हो जाते हैं और ये इतनी तेजी से फैलता है कि 10-15 फीट तक जाता है। हो सकता है उसके नुकसान उतने ना हो, लेकिन एक बार को इंसान अनईजी तो हो ही जाता है और बहुत इरिटेबल होता है जब धुआं उसके आसपास से, या इवन जो च्यूइंग टोबैको, आपका ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर तम्बाकू खा के बैठा है, उसकी स्मेल लगातार पीछे आ रही है, ये बहुत एक अनईजी फीलिंग होती है। आई कैन रिलेट विद दैट।
4: हेलो,
2: हाँ जी,
4: मेरा नाम इंस्का राजपूत है, मैं शेखपुर कसला लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरे पापा दरअसल मसाला खाते हैं, तो उनका इलाज क्या है?
1: जी जी, तो ये ईस्टर्न यूपी में मसाला पान खाने का बहुत रिवाज है और बेटे हम तो यही कहेंगे कि आप पिताजी को सलाह दें कि इससे आपको लंबे अरसे में कैंसर होने के बहुत हाई चांस है। जीभ का कैंसर, बक्कल कैंसर, मुंह का कैंसर और लंग कैंसर, ये सब कैंसर्स हो सकते हैं। इसको छोड़ना चाहिए। इसकी उनसे कहिए, इसकी स्मेल भी हमको अच्छी नहीं लगती है और हमको आपके आस पास ही रहना है, तो आप इसे छोड़ दें, जितना जल्दी उतना अच्छा होगा आपके लिए।
4: जी, थैंक यू।
2: तो सर अब चलते चलते हम जिससे एंड करना चाहेंगे शो का, वो है हाउ टू क्विट।
1: जी मैडम, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें 2-3 चीजें अहम ये हैं कि एक तो इन लोगों के प्रति हमको थोड़ा सहानुभूति दिखानी है, उनकी भर्त्सना नहीं करनी कि आप हमसे दूर रहिए, हम आपको डिसलाइक करते हैं। उनके साथ सिंपैथी दीजिए, उनको राय दीजिए। उनको निकोटीन के अल्टरनेटिव्स हैं, च्युइंगम्स हैं या टैबलेट्स हैं, लोजेंजेस हैं जो शुगर फ्री हैं, उससे तलब को दबा सकते हैं। कुछ दवाइयां हैं ब्रुपिनॉन जैसी जो हमारे साइकेट्रिस्ट या डी एडिक्शन सेंटर में लोग देते हैं, उससे छुड़वा सकते हैं। और अपने तरह से कुछ ऐसे तरीके अपनाएं, जैसे डिले है, आप जो सिगरेट आधा

0: घंटे पीते थे, आप उसको अगर दो दो तीन तीन घंटे पे करें शुरू में और अल्टीमेटली छोड़ने का प्रयास करें तो वो कारगर होता है। या सिचुएशंस हैं, एक खास मौके पे जाके आपको तलब लगती है, किसी बार में बैठे हैं या किसी मीटिंग में बैठे हैं या दोस्तों में बैठे हैं, उन सिचुएशंस में आपको तलब लगती है कि अब हम सिगरेट उठाते हैं और हम पीते हैं, तो उन सिचुएशंस को अवॉइड करिए आप। और कुछ प्राणायाम जैसे सांस के आसन हैं वो कर सकते हैं, जिस वक्त आपको तलब लगे आप वो करना शुरू करिए, या कोई भी अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, जैसे म्यूजिक है या रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है या जिम जाना है। जब आपको तलब लगे आप डिस्ट्रैक्शन अपनाइएगा और दूसरी तरफ ध्यान केंद्रित करिएगा। इन सब चीज़ों से पाया गया है कि सिगरेट और तम्बाकू सेवन छूट सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें हम सभी को मिलकर साथ चलना पड़ेगा, चाहे वो घर वाले हों, पेरेंट्स हों, स्कूल में टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, सोसाइटी के लोग हों। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें इन लोगों से सहानुभूति रखनी पड़ेगी, इन्हें अलग थलग नहीं करना होगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की रिस्क ऑफ टोबैको यूज। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का हम शुक्रिया अदा करते हैं, चेयरमैन एंड एचओडी कार्डियोलॉजी पीएलके हॉस्पिटल।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

लेकिन ये चीज़ याद रखनी है जिन्ना ने सवालों के जवाब नहीं दिते उन्हां दे जड़े गीत ने वह प्ले नहीं किते जाणगे। सो सोच समझ के तुसीं ऑन एयर आयो। लो जी फिलहाल तुसीं इंजॉय करो यह ट्रैक तुहाडे सारिया दे रेडियो सैट ते। नंबर एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ 0181 2342 174 देखदे हां साडे पहले लिसनर कौन होणगे प्रोग्राम दे विच।

टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला वो मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर।

अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं तो कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला।

हूँ भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे

0: नमस्कार
1: जी। कौन जनाब गल कर रहे ने?
0: जिला लुधियाना मुलापुर जाखा मंडी तो बयाली साल पुराना श्रोता राजेश जैन बिट्टू बोल रहे हैं जी।
1: जी राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है साडे हेलो जलंधर प्रोग्राम च। तुहाडा
0: ठीक है जी? अज तो तुसीं जवानी प्रोग्राम ही चला रहे हो
1: किवें?
0: जवानी च पहेलियां च पुछी जांदे सवाल जवाब।
1: हां मैं क्या, असीं भी अपने लिसनर्स तो पुछ लईए फिर।
0: नहीं मैडम मेरी गल सुनो, फोन बड़ा औखा लगता, किसी ने निराश ना करो।
1: नहीं, देखो एक घंटे का प्रोग्राम होंदा है ते सारियां नूं बड़ी एक्साइटमेंट होंदी है कि असी ऑन एयर जाइए, सवालों के जवाब देइए ते सारे जिहड़े बाकी स्रोते ने ओह वी तुहाडी आवाज सुने, तां करके जिहड़े हैगे सारे ही कॉल्स बैक टू बैक लगांदे ने। चलो तुसी तां लकी हो।
0: मैं काम छड्ड के स्पेशल फोन लगाया वा।
1: हां देखो तुहाडा कॉल लग भी गया। तुहाडा कॉल लग भी गया। देखो एक सवाल मेनू कहा कि सवाल बदल दो, हुण मैं जिहड़े पंछी दी आवाज सुना रही हां, जे तुसीं इहदा नहीं सही जवाब दिता ते तुहाडी जिहड़ी फरमाइश है ओह नहीं पूरी कीती जाएगी। ठीक है जी, तुसीं पहला सुन लो।
0: ससुर
1: ने जे प्रोग्राम सुन रहे हो फिर फरमाइश की है, कभी खोले ना तिजोरी का ताला, किशोर कुमार जी की आवाज में थोड़े सारे दे रेडियो सेट दे गाना। मैं कह रही है शायद बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लो जी सुन के वेख दी। लेकिन 3:40 हो गए ने साडे स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक, ते अद्धा टाइम हो गया ते बाकी जिहड़े लिसनर सानू सुन रहे ने फटाफट कॉल करो 0181 43 174 ते।

0: प्यारे प्यारे गीत किस्से ते कहानी तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम युवाणी एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर ते मैं हां तुहाडी दोस्त आरजे नेहा
1: मैं हां थोड़े दिला दी धड़कन ते चेहरे ते मुस्कान लैण वाली थोड़ी अपनी आरजे दोस्त दीक्षा
0: ते दोस्तों अज दा प्रोग्राम बहुत ही खास ते इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अज दे प्रोग्राम विच असी लेके आए हैं कुछ खास मेहमानां दे नाल गलबात ते कुछ स्पोर्ट्स सैगमेंट्स दे उत्ते चटपटियां गल्लां बातां ते साडे नाल प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो इदां ही ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਸ਼ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ
1: जी दोस्तों दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 गुजरात के नवसारी विच होया सी। वो एक अध्यापक अर्थशास्त्री समाज सुधारक आज़ादी अंदोलन के महत्वपूर्ण आगू ने उन्हें दी सब तो वड्डी देन सी ड्रेन थ्यूरी इस सिद्धांत राही उन्होंने दस्या कि अंग्रेज़ भारत के दौलत कच्चा माल ते कमाई नू इंग्लैंड लेके जा रहे सी जिस कारण भारत गरीब हुंदा जा रहा सी। ये विचार उस समय बहुत प्रभावशाली साबित होए लोगों नू ब्रिटिश राज की असलियत समझ आई।
0: दोस्तों बचपन तो ही दादा भाई बहुत होनहार सन ओ एल्फिस्टन कॉलेज विच पढ़े अते बाद विच उत्थे ही प्रोफेसर बन गए। की तुसी जानदे हो ओ इस तरह की उच्च पदवी हासिल करने वाले पहले भारतीयों विचों एक सन पर यह तो सिर्फ शुरुआत सी। दादा भाई नौरोजी ने एक वड्डा सवाल पूछा अपने आप तो उन्होंने सवाल पूछा कि भारत गरीब क्यों हो रहा है।
1: जी बिल्कुल असं हुणे गल की है कि भारत गरीब क्यों हो रहा है कि अंग्रेज़ा वल जड़ा है कि कच्चा माल जा रहा सीगा ते दौलत सारी अंग्रेज़ा वल जा रही सी इस कारण जड़ा साडा इंडिया दिनों दिन जड़ा है कि वह गरीब हो रहा सीगा। एक होर इंट्रस्टिंग ते दिलचस्प गल तुहाडे नाल सांझा करनी आ 1892 दे विच दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद दे विच चुने जाण वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने उत्थे भी भारतीयों दे हक्कां दी मजबूती नाल आवाज़ उठाई। वह इंडियन नैशनल

0: वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी ते अपा है जी आरजे दीक्षा ते मैं थोड़ी दोस्त आरजे नेहा ते दोस्तों सेगमेंट साडा शुरू हो गया है वर्ड एक्सप्रेस जिदे विच असी लेके आए थोड़े लिए बहुत ही खास ते इंटरेस्टिंग जो वर्ड ते केड़ा वर्ड है दीक्षा अज दा
1: वर्ड है जी साडा मंकी बिजनेस। हुण तुसीं सोच रहे होगे केड़े मंकियां दा बिजनेस है ते तुसीं असी शुरू करन जा रहे
0: हो। दोस्तों कोई बांदरां दा बिजनेस नहीं होण लगा, एक वर्ड है बहुत ही फनी जा ईडियम है एक इंग्लिश दी जिन्हों मंकी बिजनेस किया जाता है। तो हूँ जो तुम सोच रहे हो कि यू मतलब बांदरों का बिजनेस पर नहीं, इतने गल हो रही है शरारत मस्ती जा किसी अजीब जी हरकत की, जिमें कि साडे ग्रुप के साडे घर बच्चे या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई इंसान इदा का जरूर हों जो बहुत ही अजीबो गरीब दिया शरारत करता है। मेरी तो एक फ्रेंड हैगी है बिल्कुल इदा की जो बिल्कुल सेम इदा दरकत ही करती है, तो ये बिल्कुल वोदे बनी हुई है ईडियम मंकी बिजनेस। दीक्षा तुहाडा कोई फ्रेंड है इदां दा?
1: बिल्कुल मेरा भी फ्रेंड है, सारे फ्रेंड हुंदे आ है ना जिहड़े कि मंकी बिजनेस जरूर करदे होणगे, ते हुण सानूं एक टर्म भी मिल गई जिथे असीं यूज कर सकदे आ।
0: बिल्कुल एक नवी टर्म मैनूं भी एक्चुअली नवी टर्म ही मिली है कि हुण मैं अपनी फ्रेंड नूं ना ये चीज़ जरूर मैनशन करके भेजूंगी कि साडे ग्रुप दे विच जिहड़ी उह है ना उही इदां दीआं हरकतां करदी है जिहनूं मंकी बिजनेस कहिंदे आ।
1: हुण तुहानूं दस दे कि इह जिहड़ा फ्रेज़ है आया कित्थों, इह मुहावरा लगभग जिहड़ा है 19वीं सदी दे विच इंग्लिश लैंग्वेज दे विच इह बहुत ज़्यादा फेमस होया सीगा। लोकां ने देखिया कि बांदर बहुत मिसचीवियस जे हुंदे आ, चंचल हुंदे आ, बड़ी ही ज़्यादा कॉपीज करदे आ, तां इह कई वार अजिही हरकतां भी करदे आ, कुछ गड़बड़ कर देंदे आ जां शरारतां करदे ने, उत्थों जिहड़ा इह वर्ड चुक्या गया सीगा मंकी बिजनेस।
0: बट जिहड़ा भी ये वर्ड है ना जिथों भी आया मैनूं तो बहुत ही फनी ते बहुत ही वधिया लगा है। मैं तो हुण अपनी फ्रेंड दे ना मैनूं लगदा नंबर ते भी आही नाम सेव करन वाली हां।
1: बिल्कुल, ते ए मैनूं लगदा कि वर्ड जिहड़ा सानूं हुण यूज करना चाहिदा।
0: बिल्कुल, ते दोस्तों तुसीं भी अपने फ्रेंड्स नूं ते अपने जिहड़े भी तुहाडे ग्रुप दे विच इदां दे लोकी हैगे ना उहनां नूं ए टाइटल टैग करो ते उहनां नूं इस नंबर नाल सेव करो, या फिर उहनां नूं एक लाइन पेस्ट तुसीं कर सकदे हो, उहनां नूं कह सकदे हो जिवें कि हू हैज़ बीन डूइंग मंकी बिजनेस इन द किचन। ठीक है, इहदा मतलब है रसोई विच इह शरारतां किसने कीतियां है, जिवें कि तुहाडे घर दे विच जिहड़े छोटे छोटे बच्चे हुंदे ना उह बहुत इदां दीआं शरारतां करदे है, कदें कोई चीज़ तोड़नी खिलार देनी है कुछ भी करना, ते तुसीं इदां दे सेंटेंस यूज कर सकदे हो अपने फ्रेंड्स लई भी ते अपने घर दे बच्चियां लई भी। अपनी रोज़ दे लैंग्वेज विच छोटी छोटी चीज़ां नूं ऐड करके तुसीं उहनूं इंप्रूव भी कर सकदे हो।
1: बिल्कुल, ते जिहड़ा इह वर्ड है असीं मजाक दे विच लै के जा रहे हां, पर नेहा मैनूं लगदा कि इह शब्द ना असीं उत्ते भी यूज़ कर सकदे हां। कई वारी साडे बहुत सारे करीब दे हुंदे आ जिहड़े सानूं डिसऑनेस्ट नाल वर्क करदे आ, सानूं चीट करदे आ या कोई इलीगल एक्टिविटी करदे आ, असीं उत्ते भी इस वर्ड नूं यूज़ कर सकदे हां।
0: बिल्कुल दीक्षा, क्योंकि जिहड़े हर एक वर्ड दे ना डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हुंदे आ, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसिस दे विच आपां यूज़ कर सकदे हां, ते कई वारी बहुत वार लोग इदां दे हुंदे ना कि मजाक करके मतलब सीरियस सिचुएशन दे विच भी मजाक करके उहनूं कहिंदे कि नहीं तां मजाक सीगा, बट नहीं सीरियस सिचुएशन नूं ते मजाक दे विच थोड़ा डिफरेंस हुंदा है, बस उहनूं असीं आप समझना है कि असीं किदां समझ सकदे हां। ते इस दे नाल ही लैने एक छोटा जिहा म्यूजिकल ब्रेक, ते ब्रेक तों बाद असीं फिर मिलदे हां तुहानूं साडे अज दे स्पोर्ट्स अपडेट दे नाल।

0: वेलकम बैक दोस्तों, 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर में है तुम्हारी दोस्त आरजे नेहा
1: ते मैं हां आरजे दोस्त दीक्षा।
0: तो दोस्तों प्रोग्राम तुसी एंजॉय करो, युवाणी ते वेला हो गया साडे अज दे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स सेगमेंट चक दे इंडिया दा। ते दोस्तों जिदे विच असी लेके आए हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स अपडेट, जिदे विच सब तो पहला असी गल करदे हां फुटबॉल दी। 2026 फीफा वर्ल्ड कप विच नॉकआउट मुकाबलियां दा जोश सिखर ते है, कई वड्डियां टीमां नूं अचानक झटके लगे ने ते प्रशंसकां नूं लगातार रोमांचक मैच देखण नूं मिल रहा है। ते हुण इस दे नाल ही रुक करदे क्रिकेट वाल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम लई इक वड्डी अपडेट सामने आई है। टीम एशिया खेडां लई पूरी तैयारी विच जुटी हुई है ते आउण वाले टूरनामेंट लई खास रणनीति दे काम चल रहा है।
1: जी दोस्तों, असी इंडिया क्रिकेट टीम की गल कर रहे हैं तो असी अगली खबर भी इंडिया क्रिकेट टीम की ही लेके आए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही दे विच आयरलैंड विच दौरा किया है, जिथे दो T20 जड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेडे गए। इस सीरीज़ दे विच टीम इंडिया ने कई नौजवान खिडारियों नूं मौका दिता ता जो अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते अपनी काबिलियत दिखा सकन। ते हालांकि ये जड़ा दौरा है भारत लई उम्मीद मुताबक नहीं रहा, आयरलैंड ने शानदार प्रदर्शन खेड दिखाउण वाजो जड़ा T20 मुकाबले जीतदी सीरीज़ दे विच 2-0 दे नाल अपने नाम कर लई है। ये पहला मौका सी जदों आयरलैंड ने भारत नूं किसी दो पक्षी T20 सीरीज़ दे विच हराया। इस सीरीज़ ने एक बार फिर ये साबित कर दिता है कि अज दी क्रिकेट टीम दे विच अज तुसीं मजबूत होना है जां अच्छा तैयारी करनी है तो फिर तुहानूं बहुत ज़्यादा जड़ा है कि प्रैक्टिस करन दी लोड़ है। नाल ही नौजवान खिडारियों दे लई ये दौरा सीखण अते तजर्बा हासिल करन दे विच काफ़ी वधिया मौका सी। जी दोस्तों, असी स्पोर्ट्स न्यूज़ लैके आ रहे हैं इस सैगमेंट दे विच, ते होर भी नेहा बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स न्यूज़ है।
0: स्पोर्ट्स अपडेट तो दोस्तों बहुत सारियां ने, पर इस तो पहला असी लैने एक छोटा जिहा म्यूजिकल।

0: टीचर का बहुत बड़ा रोल हैगा। देखो पहले तो पेरेंट्स का ही रोल है क्योंकि बच्चे का पहला इंटरैक्शन जिहड़ा उहदे उहनां दे पेरेंट्स लई हुंदा है
1: जी।
0: हुण अजकल इदां दी जिंदगी है, भाग दौड़ बड़ी कि सारे काम कर रहे हैं, जॉब ते जा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ां हैगियां, पर नाल नाल जे असी रिस्पोंसिबिलिटी लिती है कि असी पेरेंट बने हाँ तो वो एक रिस्पोंसिबिलिटी है
1: जी।
0: ते स्पेशली बच्चों के जिहड़े पहले 3 साल है वो बहुत इंपोर्टेंट होंदे है
1: जी।
0: ठीक है, तो मैं किसी नूं ब्लेम नहीं करांगी, बट जो असी बच्चे हाथ मोबाइल देता, उन्हें खाना खिलाता, ताकि वह सारा जो हार्डवर्क है सानू ना करना पे, क्योंकि पहले साड़िया मावां जो पिछे पिछे फिर दिया सीआं, ठीक है, या प्यो भी साढ़े पिछे पिछे फिर दे सी, पर हुण की हो गया कि मोबाइल लाता, बच्चा बह गया तो खाता पिया है, तो इसके कारण की हैगा है कि बच्चे जिहड़े हैगे वो डिपेंडेंट हो रहे हैं स्क्रीन के उत्ते। ये चीज़ जिहड़ी हैगी है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये गाइडलाइन भी हैगी है WHO की कि 3 साल के छोटे बच्चे तो तुसी स्क्रीन नहीं दिखानी है। तो पेरेंट्स की जिहड़ी हैगी है वो बहुत बड़ी रिस्पोंसिबिलिटी है इहदे विच गाइड करने विच, शेप करने विच।
1: डॉक्टर अदिति, टीचर्स का की रोल रहिंदा है अखां नूं बचाण दे विच?
0: हाँ जी, टीचर्स जिहड़े हैगे है, पेरेंट्स तो बाद जिहड़े टीचर्स ही आते हैं, है ना, क्योंकि एक एज तो बाद जिहड़े हैगे बच्चे पेरेंट्स की ना सुन के टीचर्स की ज़्यादा सुनते हैं, तो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं उन्होंने लाइफ से। तो टीचर्स का बहुत रोल हैगा कि उन्होंने गाइड करने, क्योंकि टीचर्स जिहड़े हैगे है वो बता सकते, प्रॉपरली दस सकते हैं बच्चों कि किदा मोबाइल उन्होंने यूज़ करना है, ठीक है। पर मैं ये जरूर कहंगी कि मैं थोड़ी जी रीलां मैं भी देखी हैं कि जदों टीचर्स जिहड़े हैगे वो की करते हैं, बच्चों डराते हैं कि कोई बच्चा ले आए अख ते वो लाती पट्टी लाती कि इदा हूँ, तो इदा नहीं करना, क्योंकि उहदे नाल की होना है कि बच्चा चलो हट तो जाएगा, पर मैंटल ट्रॉमा जिहड़ा हैगा बच्चों ते, वो स्पेशली जिहड़े छोटे बच्चे है नर्सरी दे प्री प्राइमरी दे जिहड़े बच्चे है, तो बहुत इफेक्ट होंदा है उन्हां नूं। उन्होंने जोड़ा है बिल्कुल इनफॉर्म करके प्रॉपरली दस के कुछ वीडियोज़ ही बना के, मैं फिर कह गई क्योंकि इतने भी फिर रोल आ गया कि स्क्रीन का, बट वो जरूरी हैगा है कि बच्चों गाइड करके उन्होंने प्रॉपर दस के जोड़ा है दस सकते हैं, नाल ही नाल टीचर जो है पेरेंट न भी गाइड कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा रोल है दोनों का ही,
1: कि मतलब डराउन ते नालो समझाना ज़्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल विषय नहीं हैगा साडा मेंटल हेल्थ का, पर मेंटल हेल्थ जिहड़ी हैगी है वो भी बहुत जरूरी है, तो ये एक तरह का ट्रॉमा हैगा है
1: जी,
0: तो एज एप्रोप्रिएट जिहड़ी लर्निंग हैगी है वो जरूर होनी चाहिए।
1: पेरेंट्स ते टीचर्स तो बाद रोल आंदा है फ्रेंड्स का, तो जब सारी फ्रेंड्स फोन यूज कर रहे हैं, सारी सोशल मीडिया से अपलोड कर रहे हैं, तो मन के विच ये आंदा कि सोशल मीडिया वैलिडेशन लई मैनू भी सोशल मीडिया से होना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ स्किप कर दूंगा, फोमो भी हमेशा रहिंदा है।
0: बिल्कुल, ये जिहड़ा फियर ऑफ मिसिंग आउट है, तो असी जिन्हों पहले पीयर प्रेशर कहते फोमो हो गया हूँ जेंजी की लैंग्वेज, तो वो चीज़ तो हैगी है, वो हमेशा तो रही है, वो चीज़ हमेशा तो रही है किसी ना किसी तरीके नाल, तो ये हैगा ही है, पर इत्थे भी जिहड़ा जिहड़ी गाइडेंस हैगी है वो पेरेंट्स ही समझा सकते हैं, तो नाले जिहड़े ट्रू फ्रेंड्स हैगे है जिहड़े समझदे इस गल नूं, जिहड़े तुहाडे सच्चे दोस्त हैगे है वो हमेशा तुहानूं गाइड करांगे।
1: ते हुण जे असीं गल करिए बीइंग अ डॉक्टर, तुसीं किहड़े प्रिकॉशन दसोगे कि ये मोबाइल दी इस एडिक्शन नूं असीं घट कर सकीए?
0: देखो जी, पहले तो हरेक जिहड़ा भी डिजीज़ है उहदे ते आंदा है प्रिवेंशन
1: जी,
0: ट्रीटमेंट तो पहले असीं गल करदे आ प्रिवेंशन दी, तो प्रिवेंशन दे लई मैं तुहानूं दसदा हैगा जिहड़ी कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स है 2020 रूल हैगा है, तो इनू एक होर टर्म आती है विजुअल हाइजीन।
1: यस, विजुअल हाइजीन,
0: हाँ, ये जिहड़ी टर्म आ रही है कि किदा असी जिहड़े हैगे ये वीडियोज विजुअल डिस्प्ले यूनिट असी किदा यूज़ करने हैं वो साड़ी विजुअल हाइजीन है, तो वो अगर उस तरह असी यूज़ करांगे वो तो सानू कोई प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी वो होनी नहीं है, है ना, जिहड़ी असी गल कर रहे हैं कंप्यूटर रिलेटेड जिहड़ी डिजीज़ है डिजिटल स्ट्रेन है वो नहीं होना, तो प्रिवेंशन का सब तो पहला रोल हैगा है, ठीक है। नाले जिस तरह मैं आयुर्वेदिक फील्ड तो आ रही हाँ, तो आयुर्वेद विच असी कहते कि वे ऑफ लाइफ है आयुर्वेद,
1: बिल्कुल,
0: तो मेडिसिन तो भी पहले कि किस तरह असी साड़ी असी दिनचर्या किदां दी रखनी है, जिहड़ी असी गल भी कीती है कि कदों असी उठना है, कदों फिर असी सारिया सारिया प्रक्रिया जिहड़ी हैगियां है, ईवन किदां ब्रश करना है, किदां ऑयल यूज़ करना है, किदां एक्सरसाइज करनी है, सारा कुछ दसिया होया हरेक स्टैप बाय स्टैप,
1: बिल्कुल,
0: तो जे असी उन्होंने भी यूज़ करांगे तो वो भी बहुत सानू हेल्प कर दे। एक उत्थे यूज़ बताया गया नस्से का, नस्से की होंदा है कि नक्च जिहड़ा हैगा है वो मेडिकेटेड ऑयल यूज़ करना,
1: बिल्कुल,
0: या पहले बुजुर्ग जिहड़े सी वो नक्च सरसों का तेल पाते, ठीक है, तो जे असी गल करिए

प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी। शाम नू दफ्तर तो बाद जो कम काज करके आप घर वापस आते हैं, एक ही सुपना होंगे अज घर जाके आराम के नाल बैठांगे, पर घर का दरवाजा खुलते ही जिवें दूजी शिफ्ट शुरू हो जाती है। कोई कहता है आ गए आओ, आंदे होए तुसीं दुध लैके आना, कोई आवाज मारदा है चलो ये पखा ठीक कर दो, बच्चे कहते हैं कि पापा मेरे लिए तुसीं चीजी लैके आनी है। इन्नी सारी जिम्मेवारियां सवेर की जिहड़ी शिफ्ट है वह ला के शाम की जिहड़ी शिफ्ट है वह शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ बंदा फिर सोचता है ऑफिस वाले ही मेरे सी, घर वाले मेरे नहीं रहे, फिर शुरू हो जाती छोटियां छोटियां शिकायत। आज फिर ट्रैफिक सी, बस बॉस ने दिमाग खा लिया, दिमाग खराब करता, घर आके भी आराम नहीं मिलता। पर एक मिनट लिए सोचो, जिस घर विच साडा इंतजार हुंदा है वह भी तो एक वड्डी नेमत है। जिस दरवाजे ते कोई तुहानू वेखदा है उडीकदा है कि आ गए।

0: ओके बाय।
1: ये तो इश्क है देखो मतलीज हो गया। हुण इस वेले शाम दे 6:20 होण जा रहे ने। बेला हो रहा है प्रादेशिक खबरां दा। एक बार असीं तुहानूं फिर जानकारी दे दिए कि मीडियम वेव के सारे चैनल्स के उत्ते तुसीं शाम 6:30 क्रिकेट की कमेंट्री सुन सकोगे ते बाकी सारे साडे प्रोग्राम तुसीं वेव ऐप राहीं सुन सकोगे। हुण सुणदे आं प्रादेशिक खबरां।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खेतीबाड़ी खेत्र दे विकास तो बिना विकसित भारत का सुपना साकार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब संबंधी अज पंजाब मोबाइल डॉक्यूमेंट्री वैना नूं कीता रवाना। संगरूर विच ओलंपिक पद्धर दे स्विमिंग पूल का भी उद्घाटन किया। मीरी पीरी के मालक 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब अज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया जा रहा है। पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अज पटियाला विखे संबंधित विभागों के अधिकारियों नाल ड्रेनेज प्रबंधन का लिया जायजा। मौसम विभाग ने कल 1 जुलाई तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च गरज चमक नाल भारी बारिश ते तापमान च गिरावट की पेशीनगोई की। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतीबाड़ी खेत्र दे विकास तो बिना विकसित भारत का सुपना साकार नहीं किया जा सकता। आज हरियाणा के रेवाड़ी जिले च बवाल स्थित खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी विखे खेत बचाओ अभियान की समाप्ति समारोह नूं संबोधन करदिआं श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने काम कर रही है जो मिट्टी ते इस विच लोड़ींदी खाद की मात्रा बारे जानकारी देवेगी। उन्होंने किसानों नूं मिट्टी की पैदावार बनाई रखने लिए अपने खेतों विच संतुलित ढंग नाल खादां ते कीटनाशकां की वरतों करने की अपील की।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
2: सेहत मंत्रालय ने सारे केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थावां नूं आवारा कुत्तियां दे हमलियां संबंधी सर्वोच्च अदालत दे दिशा निर्देशों की पालना नूं अज तों यकीनी बनाउण दे निर्देश दिते ने। सारे संबंधित विभागों नूं एक निर्धारित समा हद दे अंदर दिशा निर्देशों नूं लागू करन लई आख्या गया। यह हुक्म पिछले साल सर्वोच्च अदालत दे फैसले तों बाद जारी किया गया सी। इसका उद्देश जनतक थावां नूं खास करके बच्चों ते मरीजां लई सुरक्षित बनाउणा है। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब नूं श्रद्धा पूर्वक मनाउण लई पंजाब सरकार की वचनबद्धता दोहराउंदिआं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज संगरूर तो पंजाब मोबाइल डॉक्यूमेंट्री वैना नूं रवाना किया। यह वैना गुरु जी के बराबरी समाजिक न्याय श्रद्धा ते विश्वव्यापी सांझीवालता के सदीवी सुनेहे नूं सूबे के कोने कोने तक पहुंचाउणगीआं। इस विशेष तौर पर तैयार की गई मुहिम तहत LED नाल लैस मोबाइल वैना राही पंजाब के सारे 23 जिलों के करीब 13,000 पिंडां च गुरु जी के जीवन फलसफे और पवित्र सिक्ख्यावां ते आधारित 30 मिनट की दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। इसका मकसद यह यकीनी बनाना है कि हर घर खास करके नौजवान पीढ़ी गुरु जी के भेदभाव रहित बराबरी वाले समाज की सेहत तो प्रेरित हो सके। यह पहलकदमी भगवंत मान सरकार वालों 650वें प्रकाश पुरब लई उलीके गए साल भर के प्रोग्रामों का हिस्सा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अज संगरूर विखे 9,50,00,000 रुपए की लागत नाल बने ओलंपिक पद्धर के स्विमिंग पूल का भी उद्घाटन किया। सूबे नूं भारत दा खेड तुरा बनाउण लई पंजाब सरकार दी वचनबद्धता दोहराउंदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि संगरूर जिला एशियन वर्ल्ड ते ओलंपिक चैंपियनां लई नर्सरी वजों उभरेगा।

0: वार हीरो स्टेडियम दे विच ओलंपिक स्टेडियम का स्विमिंग पूल जिहड़ा बन के तैयार होया 9.5 करोड़ रुपए की लागत नाल ये पूल बनया। इंटरनेशनल पद्धर दियां सहूलतां दित्तियां गईयां ने। ये असल च कल्ला स्विमिंग पूल नहीं, ये साडे आउण वाले एशियन वर्ल्ड ते ओलंपिक चैंपियनां दी नर्सरी बनूगी है। ते जदों मैडल जित के आउणगे तां उहनां नूं आउण सार ओलंपिक दे जां कॉमनवेल्थ दे जां वर्ल्ड चैंपियनशिप दे किसे भी गोल्ड मैडल वास्ते 1 करोड़ रुपया, चांदी दे मैडल वास्ते 75 लाख ते 50 लाख रुपया कांसी दे मैडल वास्ते असीं आउण सार दिंदे आ।
1: मेरी पीरी के मालक 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगतां दे सहयोग नाल श्री अकाल तख्त साहब विखे श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। इस मौके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़कर समेत प्रमुख पंथक हस्तियां हाजिर रही। श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। समागम दौरान श्री गड़गज ने संगतों को श्री गुरु हरगोबिंद साहब के प्रकाश पुरब की वधाई दिंदिया गुरु साहब जी के उपदेशों से चलन की प्रेरणा दी। इस दे नाल ही गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश अस्थान गुरद्वारा जन्म अस्थान गुरु की बटाली विखे भी विशेष समागम किए गए। इस वेले अमृतसर स्थित श्री दरबार साहब विखे अत सुंदर दीपमाला ते आतिशबाजी भी की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अज 6वें गुरु साहब जी के प्रकाश पुरब मौके शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच गृह मंत्री ने कहा कि अध्यात्मिक शक्ति ते बहादुरी विचकार असाधारण सद्भावना का गहरा संदेश दिंदिया गुरु साहब ने श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना की ते समाज नूं अन्याय खिलाफ खड़े होने लिए प्रेरित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 तलवारां चुक के गुरु साहब ने दिखाया कि अध्यात्मिकता दे नाल नाल अन्याय खिलाफ निडर होके खड़े होना विश्वास का अनिखड़वां अंग है। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी गुरु साहब जी के प्रकाश पुरब दीआं समूह संगतां नूं वधाईआं दित्तीआं ने। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अज पटियाला विखे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल नगर निगम के अधिकारियों ते होरना संबंधित विभागों के अधिकारियों नाल मिलके शहर के ड्रेनेज प्रबंधन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वड्डी नदी छोटी नदी मुख ड्रेनेज ते बरसाती पानी की निकासी नाल संबंधित वख-वख थावां दा दौरा करके चल रहे विकास कार्यां की प्रगति का भी निरीक्षण किया। सेहत मंत्री ने संबंधित अधिकारियों तो चल रहे प्रोजैक्टों बारे जानकारी प्राप्त की ते काम की गुणवत्ता ते समय सिर मुकम्मल करन संबंधी लोड़ींदे दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार पटियाला नूं बरसाती पानी की समस्या तो राहत दवाउण लई पूरी तरह वचनबद्ध है ते इस दिशा च योजनाबद्ध ढंग नाल काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम दौरान पटियाला के कई इलाकों पानी भरन की समस्या गंभीरता नाल लैंदिया निकासी नालियां की सफाई ड्रेनां की समर्था वधाउण पानी के निर्विघन वहां नूं यकीनी बनाउण ते संवेदनशील थावां ते लोड़ींदे सुधार कार्ज तेजी नाल करवाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों नूं हदायत की कि हर प्रोजैक्ट की नियमित निगरानी की जाए तो लोगों की सहूलत नूं ध्यान च रखदिआं हर काम निर्धारित समाहद अंदर उच्च मियार नाल पूरा किया जाए। ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਥੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 57 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ 'ਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਨ ਸਬਰਵਾਲ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਅਤੇ ਬਰਾਰੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ 5 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ SIR ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 100% ਗੰਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਆਦਿਤ

प्रोग्राम चल रहा है जी लव यू जिंदगी एंजॉय तुसी कर रहे हो अपनी दोस्त आरजे शाहिन दे नाल। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल जी, असी कोई तख्त हासिल करना है यानी कि कोई अपना एम जिहड़ा है गोल है उसनु हासिल करना है, उसके वास्ते सानू मेहनत करनी पएगी ते जिहड़ी मंजिल है वह इन्नी आसानी दे नाल नहीं मिलदी। सानू जिहड़ा है जुगनू बन के जिहड़ी रोशनी है वह अपने वास्ते आप ही जलानी पैंदी है। तद ही कहिंदे ने कि जिहड़ी मेहनत है उसनु जिहड़ा हार्डवर्क है वह एक दिन जरूर उसका जिहड़ा रिजल्ट है वह पॉजिटिव होंदा है। उसका जिहड़ा मिठा जिहा फल है सानू देर सवेर मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। पंजाबी खबरों तो पहला आप गल कर रहे सी जी इनर ते आउटर ब्यूटी दी। हाँ मैं कहा सी कि इस टॉपिक ते आप फिर कभी गल करांगे लेकिन मेरे तो रह नहीं होया। मैं तो उस तो पहला कहा सी कि जिहड़ी फिजिकल अपीयरेंस है अजकल आप देखते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। आप किसी भी परसन नू पहली गल तो जज नहीं करना चाहिए लेकिन सब तो पहला आप अपीयरेंस तो जज करते हैं। अपनी ब्यूटी नू मेनटेन करने वास्ते असं कि कुछ करते हैं, किन्ने जिहड़े प्रोडक्ट्स ने वो यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करन दे नाल नाल किन्निया इदा दियां मल्टीवाइटमिनस ने जी टैबलेट्स ने जी डाइट है अपनी वो इन्नी ज़्यादा वधिया डाइटिशियन तो जी डाइट अपना डाइट प्लैन है वो तैयार करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, डांस करते हैं, फिजिकली तो मैंटली हैल्थ जी है उस वास्ते आप कि कुछ करते हैं। तो इन्नी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए, मैं कहनी कि ब्यूटी ट्रीटमेंट इनफैक्ट इस आउटर ब्यूटी नू मेनटेन करने वास्ते तो कई लोग अजकल प्लास्टिक सर्जरी भी करवाते हैं। लेकिन कई बार ये जी प्लास्टिक सर्जरी है ना इसका जो असर है वह बिल्कुल ही उल्टा हो जाता, बंदा सुंदर दिखन दे ता नहीं दिखता लेकिन कुछ होर ही बन जाता है। पर कि ये आउटर ब्यूटी परमानेंट है हमेशा रहेगी? बिल्कुल नहीं। पहला बच्चे फिर जवान फिर बुढ़े हो जाते हैं असी, तो उम्र के नाल

लव योर जिंदगी प्रोग्राम चल रहे हैं, इंजॉय तुसी कर रहे हो अपनी दोस्त आरजी शाहिन दे नाल। आउटर ब्यूटी की आप गल कर रहे थे, मैं जिक्र किया इनर ब्यूटी का भी। इनर ब्यूटी की गल करिए तो उहदे विच कई चीज़ां शामिल ने, साडे थॉट्स, बिहेवियर, नेचर, साडे शब्द। विजुअल ब्यूटी भी आप इस कह सकते हैं। शब्द इस तरह के हथियार ने जिहड़ी बंदी गल विगाड़ भी सकते हैं तो विगड़ की गल बना भी सकते हैं तो सांभ भी सकते हैं। कई बार आप देखते हैं कि इदा के जिहड़े शब्द ने आप यूज़ करते हैं कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसनू वो जिहड़े शब्द ने वह चुभ जाते हैं। सिर्फ शब्दों के राही गल नहीं होंगी, गल वैसे इशारिया के नाल भी होंगी है, बस ये है कि सामने वाला तुहाडे जिहड़े इशारे ने वो समझदा होवे। ताही तां कई बार कहिंदे इशारे इशारियां च गल्लां हो जांदियां ने, जिहड़े इशारे समझदे ने उहनां नूं शब्दों की जरूरत ही नहीं पैंदी।

नमस्कार दोस्तों जी, की हाल चाल है जी। थोड़ा दोस्त कुलदीप लैके हाजिर हो चुके हैं थोड़ा फेवरेट वाला शो जिसका नाम है जी फिल्मी दुनिया। और किसते जी न्यूज़ ऑन एयर ऐप जी थोड़ी तुसी यूज़ कर रहे हो उसके उत्ते आकाशवाणी जलंधर का एफ एम रेनबो यह चैनल है जी। और प्रोग्राम तुसी इंजॉय करोगे अपने दोस्त कुलदीप दे नाल फिल्मी दुनिया। और यह पुरानी फिल्म वाला जो म्यूजिक तुसी सुन रहे हो यह इस तो तुसी थोड़ा आइडिया शायद तुहानू आ ही गया होगा कि अज किना दी असी गल करन जा रहे हैं जी। बिल्कुल जी, अज जिना दी गल करन जा रहे हैं वह है जी म्यूजिक डायरेक्टर, ऑर्केस्ट्रेटर, कंडक्टर, कंपोजर, मतलब उन्होंने जो मर्जी कह लो, मतलब मल्टी टैलेंटेड परसनैलिटी जी है, उन्होंने गलबात अज असी इस प्रोग्राम दे विच करांगे। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। जी कल्याण जी और आनंद जी के नाँ तो तुसी इस जोड़ी नूं जानते हो, पर असी अज जिन्हां दे बारे जिन्हां नूं याद करना है वह कल्याण जी है, पर इन्हां दी जिहड़ी जोड़ी है उसके बारे भी गलबात करांगे। और शुरुआत करते हैं कल्याण जी के बारे, क्योंकि अज ही दे दिन यानी 30 जून 1928 यह ब्रिटिश इंडिया जिहड़ा सी उदों उस समय इन्हां दा जन्म होया सी और इन्हां नूं असी अज याद करना है। और इन्हां दे ही जिहड़े कंपोज कीते हुए गीत और जिहड़े भी इन्हां ने काम कीते उस दे बारे असी गल करांगे और प्यारे प्यारे जिहे गीत भी असी सुनांगे। कल्याण जी शाह भारतीय फिल्म संगीत दे इतिहास दे सब तो महान संगीतकारां विच्चों इक रहे। उन्होंने अपने छोटे भरा यानी कि आनंद जी वीर जी शाह नाल मिल के कल्याण जी आनंद जी की प्रसिद्ध जोड़ी जिहड़ी है वह बनाई, जिसने लगभग 4 दहाकों तक हिंदी फिल्म संगीत नूं अनगिनत सदाबहार धुनां दित्तियां। उन्हां दे पिता वीर जी शाह एक व्यापारी सी जो बाद विच रोजगार लई मुंबई आ वसे। परिवार का माहौल संगीत प्रेमी सी अते इस दा प्रभाव जिहड़ा आ कल्याण जी दे बचपन ते डूंगा पिया। बचपन में कल्याण जी बहुत ही सादे शांत ते मेहनती सुभा दे सी। आर्थिक हालात बहुत मजबूत नहीं सी, पर संगीत प्रति उन्हां दी लगन जिहड़ी आ ओह बेमिसाल सी। ओह घंटिया साजां नाल जिहड़े साज जिहड़े हुंदे आ संगीत साज जिहड़े हो गए आ उन्हां नाल जिहड़े आ प्रयोग यानी कि कह लो कि अलग अलग जिहड़ी चीज़ां ओह करदे रहिंदे सी, इहनां अलग अलग धुनियां जां कोई भी आ उन्हां नाल कर जिदा आप कह दें जे अजक के छोटे बच्चे हैं वो कोई कोई चीज़ पंगे लेंदे रेंदे हैं उदा ही भी जड़े करते रहेंगे। उन्होंने परिवार के एक पूर्वज जड़े ने वो लोग संगीत नाल जुड़े से, इस कारण घर विच संगीत की रुचि जी पहल तो ही सी। इन्हां दे बारे बहुत सारी इंट्रस्टिंग गल्लां ने, इन्हां दे बारे बहुत सारे इंट्रस्टिंग काम ने, इन्हां दे बहुत फेमस फेमस इन्हां ने मूवीज़ दे विच काम कीता है, बहुत वधिया वधिया गाने जिहड़े हैं जिवें कि कई के पान बना, बिल्कुल जी ये भी इन्हां दा ही है। और बहुत सारे इदां दे गाने ने जिहड़े कि इन्हां ने कंपोज कीते ने उन्हां दे नाल, और जिहड़े संगीतकार हैं उन्हां दे नाल भी काम कीता है। इंट्रस्टिंग गल्लां भी उह सब असीं अज इस प्रोग्राम दे विच करांगे जो कि तुसीं सुन रहे हो न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते। और समां जिहड़ा हो चुका है 7:09। सो इस प्रोग्राम का पहला गीत सुन लें, है ना, पोस्ट बॉक्स नंबर जी फिल्म सी यानी पोस्ट बॉक्स नंबर 999999 उस मूवी का गाना सुनते हैं हेमंत कुमार जी की आवाज़ के, ओ नींद ना मुझको आए, आओ सुनते हैं प्यारा जहा गीत तो फिर मिलते हैं इस गीत तो जाने कितनी सुन लेना FM रेनबो जलंधर, दिल तो दिल तक।

देख लो गाने यार कमाल, और म्यूजिक भी कमाल है ना। देख क्या कहने क्या कहने क्या कहने जी, बिल्कुल जी। और कल्याण जी वीर जी शाह जी जदों उन्होंने काम किया, यानी कि जिहड़ी फिल्म इन्होंने सोलो जिस दे विच काम किया है, जिदा दोबारा दस दिना जी, सम्राट चंद्रगुप्त, पोस्ट बॉक्स नंबर 999, बेदर्द जमाना क्या जाने, ओह तेरा क्या कहना, यहो जी फिल्मों के विच इन्होंने काम किया। उस तो बाद जी इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के धमाला मचाइया ना आनंद जी के नाल मिलके, और क्या कहने उस चीज़ के जी। बिल्कुल जी, दोनों ने मिलके, दोनों जने कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, ऑर्केस्ट्रेटर, कंडक्टर, यानी कि मल्टी टैलेंटेड परसनैलिटीज़ दोनों ने जी जदों इंडस्ट्री के आए, यानी कि 1959 तो बाद इन्होंने अपने भरा आनंद जी नाल अधिकारिक तौर पर उन्होंने ये जुड़ गए, तो कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी जी है वह बन गई। यही जोड़ी जी है भारतीय फिल्म इतिहास के जी बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। इस जोड़ी ने लगभग 250 फिल्मों लिए संगीत तैयार किया, और संगीत जिहड़ा भारतीय शास्त्रीय संगीत और पछमी संगीत का यह सुंदर मेल रहे, वड्डे ऑर्केस्ट्रा की इन्होंने वरतों की, नवे साजा के नाल भी प्रयोग जिहड़ा वो किया, और मिठियां ते यादगार धुना जिहड़ियां वह भी इन्होंने कीतियां, और हर किस्म के गीत जिहड़े आ रोमांटिक होन, भगती वाले, कवाली, गज़ल, देशभगति, एक्शन या लोक धुना वह भी इन्होंने कीतियां। उन्नीस सौ सठ का दहाका कल्याण जी ते आनंद जी के जीवन का सब तो महत्वपूर्ण मोड़ साबित होया। इस दहाके दौरान वह सिर्फ एक संगीतकार जोड़ी नहीं रहे, सगों हिंदी फिल्म संगीत दी सब तो भरोसेमंद अते लोकप्रिय जोड़ियों में शामिल हो गए। निर्माता अते निर्देशक यही मनन लग पे कि जो फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी के हाथ में है तो घट्टो घट गीत जरूर हिट होंगे। ये कोई छोटी मोटी गल नहीं होंगी, इन्ना ही कहना डायरेक्टर वालों या निर्देशक वालों ये बहुत वड्डी गल हो जाती है। और 1960 जदों जहाका सीगा उस समय फिल्म उद्योग विच मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त सी। शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्वन, ओपी नैयर, रोशन और मदन मोहन वर्गे महान संगीतकार अपने शिखर ते सन। अजिहे माहौल विच अपनी वक्री पहचान बनाउणा बहुत ही ज़्यादा औखा सी, पर कल्याण जी आनंद जी ने किसी की नकल नहीं की, उन्होंने अपनी वक्री शैली विकसित की। उन्होंने संगीत विच सी साधारण पर दिल नूं छोण वाली धुना, मजबूत ऑर्केस्ट्रेशन, भारतीय लोक संगीत की मिठास और पछमी संगीत की आधुनिकता, यह सारा सुंदर मेल जदों मिलिया तो बस संगीत यहो जिहा बनया कि बस अं सुनते रहने। 1965 एक रिलीज़ हुई सी फिल्म हिमालयन की गोद में, उन्होंने कल्याण जी आनंद जी की प्रसिद्धि नवीं उचाइया से पहुँचा दिता। इस फिल्म के गीतों में पहाड़ी लोक संगीत की मिठास और भारतीय शास्त्रीय संगीत की झलक जी है वह मिलती है। गीतों दी धुना इन्नी साधारण और सुरीलियां ने कि वह तुरंत लोगों की जुबान पर चढ़ गई। इस फिल्म ने साबित किया कि यह जोड़ी सिर्फ एक आधुनिक संगीत ही नहीं सगों भावपूर्ण और लोकधारा नाल जुड़िया रचनावां की बेमिसाल ढंग नाल तैयार कर सकती है। उस तो बाद फिल्म आई हैं जी जब जब फूल खिले, और उसके गीत सके परदेसियों से नाखियाँ मिलाना, या फिर ये समा समा है ये प्यार का, यहोजे गीत बड़े ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। सो दोस्तों गल्लां बहुत सारिया हो रही ने, हो चुकिया भी ने, पर गीत जड़े हैं वह भी तो तुम सुनाने, आओ सुना सुनाते हैं इन्हों की फिल्म एक छलिया जिसके कल्याण जी आनंद जी ने कट्ठे काम किया, और इसका यानी कि गीत है एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर होया सी मुकेश जी की आवाज़ में। मैं गीत नहीं दसूँगा, तुसीं खुद सुनिया, बहुत ही प्यारा गीत है।

ये दोस्तों गल चल रही है जी कल्याण जी आनंद जी की, और कल्याण जी आनंद जी ते मुकेश दी जोड़ी ने कई अमर गीत गाए। उन्हां दा मानना सी कि मुकेश दी आवाज़ विच दर्द सादगी अते सच्चाई है, इसलिए वह भावनात्मक गीतां लई अक्सर मुकेश नूं चुंदे सी। उन्हां दे गीत विच एक खास गल ये सी कि वह धुन कदे भी गायक दी आवाज़ ते हावी नहीं हुंदी सी, सगों उस नूं होर निखारदी सी। जिमें कि मुकेश जी की आवाज़ में एक होर गीत है हिमालयन की गोद में, जिदा कि असी फिल्म की गल कर रहे सी, और उस फिल्म का एक गीत है। आओ दो लाइन उस गीत दी भी सुनते हैं।

कैसा भोला भाला अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो।

खुल जाए बंद अकल का ताला जी। बिल्कुल जी, ये गाना बहुत ज्यादा मशहूर होया सी डॉन फिल्म का गाना जड़ा है। डॉन फिल्म के असी दो गाने सुन लिया मेरे ख्याल नाल अज। गल चल रही है जी किना दी, कल्याण जैना जी, मशहूर संगीतकार। और किसी भी संगीतकार की असली काबिलियत उस वेले सामने आती है जो वह वक् वक् गायकों की आवाज़ शैली ते सीमावां नूं समझ के उन्होंने सही तो नेड़ी ओ तैयार करे। कल्याण जैना जी इस कला के माहिर सन, और वह हर गायक नूं इको जिही धुन नहीं दिंदे सी, सगों उसकी आवाज़ के रंग भावना ते गायकी की ताकत नूं ध्यान विच रख के संगीत तैयार करदे सी। यही कारण है कि उन्होंने गीत अज भी ताजगी नाल सुने जाते हैं। कल्याण जैना जी की सब तो वड्डी खासियत यह सी कि वह किसी एक किस्म के संगीत तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने रोमांटिक, देशभक्ति, भजन, कवाली, गजल, लोक संगीत, एक्शन, कैबरे और दर्द भरे गीतों विच भी अपनी जिहड़ी आ बराबरी कामयाबी हासिल की। यही कारण है कि उन्होंने गीत अज भी हर उम्र के लोग यानी सुनते हैं। दोस्तों गल्लां बहुत हो गई ने और गीत भी एक सुन लें इन्हां दे। गीत जिन्हें जिन्हें सुनी जाइए मैनूं लगता तुहानूं गीतां दे विच मज़ा आता है। इन्हां दे बारे आप गल्लां करांगे वह तुहानूं ज़्यादा इंट्रस्टिंग नहीं लगदियां, पर इंट्रस्टिंग गल्लां बहुत ने इन्हां दे बारे, और जिन्नियां भी सुनिया उन्ने ही घट ने। तो आओ सुनते हैं एक गीत मुकद्दर का सिकंदर, किशोर जी की आवाज़। और किशोर जी के नाल इन्हां दा भी एक अलग जिहा रिश्ता सी। किशोर जी जिहड़े थोड़े जिहे नटखट कह लो किस गायक ने, और जदों भी गीत गाउंदे ने उन्हां दा अलग ही स्टाइल हुंदा सी। जिद्दां कि हुण असीं सुणिया खाई के पान बनारस वाला, और खाई के पान बनारस वाला जिहड़ा गाना इन्हां ने पान खा के गाया है जी। बिल्कुल जी, बहुत सारी इंट्रस्टिंग इहो जी गल्लां ने। और समा चलो थोड़ा घट है, पर करांगे गल्लां असीं नाल नाल, गीत भी असीं तुहानूं सुणांदे रहिणे हां जी।

0: ये दोस्तों गल चल रही है जी कल्याण जी अनंत जी, यानी कि एक जोड़ी मशहूर जोड़ी, पर यानी कि 24 अगस्त 2000 के 72 साल की उम्र च कल्याण जी इस इंडस्ट्री और इस दुनिया तो बिछोड़ा कर गए और पिछे छड़ गए काफ़ी सारे गीत और जोड़ी जी है इन्होंने भी काफ़ी काम किया और जिन्हों के बारे असं गल कर रहे हैं। भावें कल्याण जी अनंत जी हिंदी फिल्म उद्योग के सब तो सफल संगीतकारा विचों ने, पर उन्हों का जीवन जड़ा बहुत ही ज़्यादा सादा सी। उस समय दे बहुत पाबंद सी, स्टूडियो विच सब नाल बराबरी का विहार करते, किसी भी वादक जा सहायक नाल कदे उच्ची आवाज़ विच गल भी नहीं की। उन्होंने सफलता नूं कदे अपने सिर उत्ते नहीं चढ़न दिता। वह मानते सी कि इंसान की सब तो वड्डी पछाण उसका विहार हुंदा है। कल्याण जी आनंद जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान सी लिटल वंडरस नामक स्टेज प्रोग्राम। इसका मकसद सी बच्चों ते नौजवान गायकों नूं मंच देना ता जो वह वड्डे दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा दिखा सकन। इस मंच तो कई कलाकारों नूं अगे वधन का मौका मिलिया। इन्हां विच बाद विच प्रसिद्धि होए कई गायक अते कलाकार भी शामिल रहे। सब तो वध जिन्हां दा नाम लिया जांदा है वह ने सोनू निगम जी, जिन्हां ने बचपन विच इस मंच ते प्रदर्शन किया अते अगे चल के भारतीय संगीत जगत दे वड्डे गायक बन गए। दोस्तों समा जड़ा आ 7:57 हो चुके हैं और होर इजाजत नहीं दिंदा इन्हां दे बारे गल करन लई। इन्हां दी जिहड़ियां गल्लां आ की दसीए, होर जिन्नी मर्जी कर लईए खत्म नहीं होणगे। इन्हां दे गीत इन्ने ने, जिन्ने मर्जी सुन लईए खत्म नहीं होणगे। सो कल्याण जी दे जाण तों बाद भी अनंत जी वीर जी शाह ने संगीत अते नौजवान कलाकारां दे मार्गदर्शन दा काम जारी रखिया। ओह वक्ख वक्ख संगीत समागमां, सभ्याचारक प्रोग्रामां अते समाजिक गतिविधियां नाल जुड़े रहे। तो दोस्तों कल्याण जी आनंद जी जिन्हों का नाम हिंदी फिल्म संगीत के सब तो महान संगीतकारों में सदा सन्मान नाल लिया जाता है और हमेशा लिया जाता रहेगा। तो अज उन्होंने बारे असी गलबात की, उम्मीद करता तुहानू बहुत वधिया लग्या होएगा। पर अगला प्रोग्राम कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगा। आओ इस प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनते हैं। 11 बजे तक तुहाडे नाल ही हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के उत्ते। सो दोस्तों जाना कितनी है, सुनते रहना है जी यह प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम ने मैं इतने ही समाप्त करने की दो इजाजत। इस प्रोग्राम का आखिरी गीत
1: पोपट हूँ मैं।

नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ ऑन एयर ऐप तुसी प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो जी रंगला पंजाब। और समा जिहड़ा है वो हो चुका है जी स्टूडियो की घड़ी दे 8:03 और 52 सैकेंड। तो दोस्तों अज इस प्रोग्राम दे विच तुहानू जिवें पता ही है रंगला पंजाब यानी पंजाब दे सभ्याचार पहरावे रोटी खान पान अलग अलग जगह इतिहास मतलब सब कुछ उस दे बारे असीं इस प्रोग्राम दे विच गल करदे आ। पर अज इस प्रोग्राम दे विच थोड़ा जिहा कुछ अलग भी करांगे जी। बिल्कुल जी, अज दे इस प्रोग्राम दे विच साडे एक बहुत ही वधिया जिहड़े कह सकदे आ कि सारे वैसे वधिया ने, पर साडे जिहड़े आर जी जी ने एक इंटरव्यू लिया है जी, परविंदर मिश्रा जी ने फतेहवीर सिंह जी का इंटरव्यू लिया है और वह असी अज इस प्रोग्राम दे विच प्रसारित करांगे। सो जाना कित नहीं है, सुनते रहना है जी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते आकाशवाणी जलंधर दा FM रेनबो चैनल। सो अगला जिहड़ा इंटरव्यू है प्ले करन जा रहे हैं जी, आओ सुनते हैं जी परविंदर मिश्रा जी का इंटरव्यू सिंगर फतेहवीर सिंह जी के नाल।

जी दोस्तों, फिर तो स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ अपने मन पसंदीदा प्रोग्राम रंगला पंजाब। और रंगला पंजाब, पंजाब दी मिट्टी, पंजाब दी खुशबू, इस विच पंजाबी सभ्याचार दे बारे असीं गलबात करदे हां और पंजाबी पहरावे दे उत्ते गलबात चल रही है जी। पंजाबी पहरावा पग, कुर्ता चादरा, तंबा ते कुर्ता, जुत्ती, पंजाबी सूट सलवार, घग्गरा, चुन्नी, दुपट्टा, फुलकारी, मतलब बहुत कुछ इहदे विच आउंदा है। दोस्तों मैं तुहानूं कुछ मतलब यह कहा कि तुहाडे कोल जे पुराना कुछ इतिहासिक या ओल्ड कुछ भी पंजाबी सभ्याचार नूं दर्शाउंदा होया कुछ भी पिया है तो तुसीं वट्सएप ते भेज सकदे हो। तां दोस्त मैनूं फरमाइश भेजण लग पए ने। दोस्तों फरमाइशी प्रोग्राम 9 बजे तो बाद यानी कि 9:02 ते शुरू हो जाता है, यानी दिल चाहता है, जिहदे विच तुसीं पंजाबी हिंदी फिल्मी गीतां दी फरमाइश जिहड़ी आ भेज दिओ। पर इस प्रोग्राम दे विच तुहानूं पंजाबी सभ्याचार दे नाल असीं जोड़े रखना है। तां दोस्तों गल चलदी है जी पंजाबी पहरावा। पुराने इतिहास के असी देख लिया कि उदों कपड़े घट सीए जाते सीगे तो एवें ही लपेट के लोग चलते सीगे। पर उस तो बाद जिवें जिवें ट्रेंड बदलता रहा वो फिर आ गया जी कुर्ता, सलवार, कमीज, जामा, तहमत, इसका रिवाज बढ़ गया। फिर उस तो बाद सलवार कमीज पंजाब की सब तो प्रसिद्ध पहचान जी बन गई। कुर्ता लम्मा ते खुला ते आरामदायक यह कपड़ा, सही गल है, जदों भी असीं पाने हैं जदों आपां कंफर्टेबल फील करना हुंदा है, कोई भी बाहरों आता है तो कुर्ता पा के चलो जी पैरो इसदे अलग अलग कपड़ियां दे विच यानी रंग दे विच पाया जाता। ज़्यादातर सफेद खादी का कुर्ता जिहड़ा कपाह का कुर्ता यह पाया जाता है। तहमत पंजाब का बहुत पुराना पहरावा है, एक कमर नाल लपेटिया जाता है तो अज भी पिंडां विच बजुर्ग इस नूं पहनते ने। उस तो अलावा एक होर है जी लाचा। लाचा किनू किनू पता है, जिसनों भी पता 9855-10-10-27 इस दे उत्ते भेजो जे किसी कोल हैगा जी। लाचा जिहड़ा है खास विआहां ते मेलियां विच पाया जांदा है ते उस दे विच पाण दी इह रीत हुंदी सी। ते पग जिहड़ी है, पग पंजाबियां दी शान ते है ही है जी। ते पग दे कई रूप ने, पटियाला शाही पग, अमृतसरी पग, नकोदर पग, दमाला,

नमस्कार दोस्तों, तुहाडा दोस्त फिर तो लै गया तुहाडा फेवरेट प्रोग्राम जिस दा नाम जी दिल चाहता है जी। और तुसी प्रोग्राम इंजॉय करोगे न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे उत्ते जो कि आकाशवाणी जलंधर दा एफएम रेनबो चैनल है, ते न्यूज़ ऑन एयर एयर दे उत्ते प्रसारित हो रहा है जी। और समा हो चुका है 9:04। और तुहानू पता ही इस प्रोग्राम दे विच की करना है जी, दिल चाहता है जो तुहाडा दिल कहेगा उही फरमाइशां जिहड़ियां उह हुंदियां रहणगियां जी पूरियां ते पूरियां। बिल्कुल इस प्रोग्राम दे विच तुसीं करना कुछ नहीं है जी, नंबर है जी व्हाट्सएप 9855101027। और उस दे उत्ते हिंदी ते पंजाबी फिल्मी जिहड़े गीत हैं उन्हां दी भी तुसीं सानू फरमाइश भेजनी है। और नाल ही तुसीं कोई भी वधिया मैसेज साडे लई भेज सकदे हो, साडे श्रोतावां लई जां किसे नूं भी डेडिकेट करना चाहुंदे हो। तो सो इस प्रोग्राम दा पहला गीत सुणदे हां असीं, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ।

फरमाइशां फरमाइशां फरमाइशां जी, सिलसिला जारी है जी। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मैसेज आया जी। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा जी का मूवी है जी। आप तो ऐसे ना थे और गाने दे बोल ने तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। स्वर मोहम्मद रफ़ी साहब जी की आवाज़ में सारा कुछ लिखते हैं इन्होंने। मैंने दसन की कुछ लोड़ नहीं पर फिर भी चलो मैं बोल दिता। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और इस अलावा एक और मैसेज पढ़ लेने हैं जी। एक मैसेज आया है सुप्रेम, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन जी। और एक फरमाइश लिखी है नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो वेद मिड्डा अलका मिड्डा जी ने। और आपका तो ये दिल से धन्यवाद जी, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और थोड़ा मैसेज इस प्रोग्राम के असी शामिल कर लिया जी। होर भी मैसेज साढ़े को आए हुए हैं। पिंड बड़िंगखेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू, लाडी धालीवाल जलंधर तो मास्टर मोहन लाल शौंकी अरविंदर कुमार जी, उन्होंने मैसेज किया और फरमाइश भी की है जी। जे समा रहा तो जरूर असी पूरी करांगे जी। और इन्होंने मैसेज किया सानू। और मैसेजेस होर भी आई जा रहे हैं साढ़े को, मैसेजेस मैसेजेस मैसेजेस। और एक होर आया प्रसारक जी, आपको आदाब नमस्कार, कोई भी गीत कह रहे ने दनोरी तैली वाला सो इन्होंने मैसेज लिखा है। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू जी शामिल करने के लिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा मैसेज इस प्रोग्राम के असी शामिल कर लिया है जी। सो दोस्तों फरमाइश असी पूरी करते हैं, तुम भी फरमाइश भेज सकते हो। करना की है जी 9855 10 10 27 9855 10 10 27 सानू हिंदी ते पंजाबी पुराने फिल्मी गीतां दी फरमाइश भेजनी है। और नाल ही कोई भी मैसेज तुसी भेजना चाहते हो भेज सकते हो। और थोड़ा जिहड़ा मैसेज इस प्रोग्राम दे विच शामिल करेगा थोड़ा अपना दोस्त कुलदीप। आओ जी इस फरमाइश नूं करदे हां जी पूरा।

जी भूल भेजा है खत में जी। वो जमाना भी शायद तुहानू याद होएगा जदों खत होंदे सी, यानी लैटर, चिट्ठियां, पत्र, उस दे राही संदेश जड़े इधर उधर भेजे जाते सी। दे उही इस गाने दे विच बयां कीता है बहुत ही खूबसूरती दे नाल। ते दोस्तों फरमाइशां भी आ रही ने, ते आओ फरमाइशां वाल छाती भी मार लीए। एक आया जी सोंग प्ले करन नू कह रहे ने, पप्पू चोपड़ा, कविता चोपड़ा, सिल्वर कुंज, एक लुधियाणा तो मैसेज कीता जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई जी। और एक मैसेज साढ़े कोल हो रहा है जी, जी बिल्कुल, स्वर्ण सिंह पिंड दोलेवाला डिस्ट्रिक्ट मोगा तो सोंग लिख रहे ने, बहुत खूबसूरत हो मूवी है, खूबसूरत। और एंड च फिर लिख रहे चेक नो, ये मैनू समझ नहीं आया क्यों लिखे इन्होंने। चलो कोई गल नहीं है, पर हमेशा जी आई जा रहे हैं मैसेजेस, असी पढ़ी जाने ने। और एक होर मैसेज है साढ़े कोल, सत श्री अकाल जी, गुरजीत सिंह भोपाल फैमिली शहर खन्ना पिंड दीवा कोसा गीत, इन्होंने यार दे यार वे करमजीत अनमोल का शायद सुनना चाह रहे हैं। मैं देखता है जे अगर मैनू मिल जाता तो मैं जरूर प्ले कराँगा। और इस तो बाद मैसेज आया साढ़े को, उत्तम नगर दिल्ली तो कमला राणी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, शायद इन्हों का

मैसेज आ चुका है जी। नहीं, इन्होंने कल मैसेज किया सी, सेम मैसेज किया सी, और अज फिर इन्होंने सेम मैसेज किया है जी। बोल रहे खोरवाल गीतिया खोरवाल के मानू प्रकाश जी ने मैसेज किया है, सेम मैसेज ना करया करो जे तुसी डिफरेंट डिफरेंट करांगे, सेम आवाज़ या सेम गीत असी सुनते हैं तो शायद वह भी अच्छा नहीं लगता। अलग या मैसेज कॉपी पेस्ट ना करया करो, अलग जहाँ मैसेज लिखया करो ताकि सानू भी पढ़न लगे ज़्यादा मज़ा आए। प्रोग्राम दिल चाहता है अमरगढ़ जिला श्री गंगानगर तो इन्होंने मैसेज किया, कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर, हरविंदर मान जी कह रहे हैं कोई भी फिल्मी गीत प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं जी, बहुत चंगा लग रहा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज लिखन दे रही। और जी तुम लास्ट लाइन लिखी है ये सुन के तो मज़ा आ गया। एक और मैसेज आया साढ़े कोई मैसेज किया है जी, इन्होंने गाने के बोल रात भर जाग जाके हमें करवट बदलते रहे लता मंगेशकर जी, और लिखा कि इन्होंने यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कोमल, शुभम धीमान, प्रियंका आंचल, कुंज परवश, प्रवीण धीमान, चिराग, रजत, राजेश धीमान, प्यार भरी नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। आओ जी जी फरमाइश पहला असी पढ़ी सी वह पूरी करते हैं जी, तो तुम भी अपनी फरमाइश भेज सकते हो 9855-10-10-9855-10-10-27 के उत्ते, और थोड़ा दोस्त थोड़ी फरमाइश पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश जी जरूर करेगा जी। आओ सुनते हैं जी फरमाइश किया हो जड़ा गीत।

जी दोस्तों, फिर तो स्वागत है जी दिल चाहता है दे विच। और समा बहुत ही घट रह गया है और इस समय दे विच मैं शायद एक ही फरमाइश पूरी कर सकता है, और लेकिन कोशिश करांगा जिन्हां दे मैसेजेस आए हुए हैं इस प्रोग्राम दे विच शामिल कर ले जां जी। फिल्म एक दूजे के लिए, सॉन्ग हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, और मैसेज लिखा है जी कह रहे ने आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी, वाइफ ज्योति मक्कड़ संदीप मक्कड़ पींगा वाला चौंक गुराया जलंधर तो इन्होंने मैसेज किया है जी। मैरिज एनिवर्सरी से तुहानू बधाइयां और तुहाडी फरमाइश जिहड़ी आ मैं बस पूरी करन जा रहा, बस बाकी दे मैसेजेस जिहड़े आ शामिल कर लवां इस प्रोग्राम दे विच। ते अगला मैसेज जिहड़ा आया साडे कोल ओह आया जी प्रोग्राम दिल चाहते है जी, की हाल भाजी? बहुत वधिया जी। चक 14 PSB जिला श्री गंगानगर तो कुलदीप सिंह, रजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विरक ते वल्लों भी सत श्री अकाल जी। कह रहे ने कोई भी गीत दे विच शामिल कर लो जी। और मैसेज है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार जी, मैसेज जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कर लिया जी, शामिल कर लिया असी मैसेज। सुरेंद्र कुमार सोपती, नीतू सोपती, साहिल

सोपती, नेहा सोपती, रितिक सोपती, राहुल आनंद, मेगा आनंद, सारा सोपती परिवार शाहकोट जिला जलंधर तो मैसेज किया जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। इस तो बाद साढ़े तो आया जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी और उस तो बादशाह मुलानी और पूरा मुलानी परिवार जी ने मैसेज किए। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सादुल शहर राजस्थान से राज राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़ जी ने मैसेज किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी ने भी मैसेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। इस तों अलावा होर आया मैसेज साढ़े कोल, भाई प्रेम सिंह वड़वाल, सुखवीर काजल वड़वाल, लखवीर वड़वाल, राणू कृष्णा, श्रीमती शिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन, रंगीता, निशान, अनमोल, प्यारे बेटे चटकू मटकू जी ने भी मैसेज किया जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मैसेजिज बहुत सारे आए हुए ने, समा जड़ा आ बहुत घट रह गया जी। अलीका डडवाली, बसंत सिंह चन, यशिका, युवराज गांधी, कुलदीप गांधी कह रहे हैं कोई भी गीत। एक मैसेज आया साढ़े को, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित खुशी गोस्वामी जी। और उसको बाद एक और मैसेज आया साढ़े को, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशब्द सिंह, राहुल जी ने मैसेज किया जी। चो बस जी, होर मैसेजिज जड़े हैं और नहीं पढ़ पावांगा, समा बहुत घट रह गया। तो और इस प्रोग्राम का आखिरी गीत प्ले करते हैं जी। जाना कितने ये सुनते रहना एफएम रेनबो जलंधर, क्योंकि 11 बजे तक तुहाडे नाल ही है न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते। अगला प्रोग्राम जिहड़ा शामे गजल ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगा। सो सुनते रहना एफएम रेनबो जलंधर, दिल तो दिल तक। इस प्रोग्राम का आखिरी गीत और मैनू दिओ इस प्रोग्राम नू इस गीत तो बाद समाप्त करन दी इजाजत।

नमस्कार दोस्तों, यह आकाशवाणी जलंधर दा FM रेनबो चैनल जिहड़ा कि तुसी इंजॉय कर रहे हो जी अपने न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे उत्ते। और शाम दे यानी रात दे 10 बज चुके ने और शाम है गज़ल गज़लां दा जड़ी जिते विच असी गज़लां राही हर एक एहसास नू बयां करते हैं, सांझा करते हैं एक दूजे दे नाल। ओहो प्रोग्राम

शुरू हो चुके हैं और प्रोग्राम पेश कर रहा है थोड़ा अपना दोस्त कुलदीप। इस प्रोग्राम दे विच असी तुहानू गज़लां सुनांदे प्यारी प्यारी और नाल दी नाल प्यारी प्यारी शायरी भी सांझी करते हैं। जे तुहाडे कोल भी कोई लिखी हुई शायरी या तुसी आप लिखते हो तो इस प्रोग्राम दे विच शामिल कर सकते हैं जी। आपां 9855101027 कोई भी शायरी तुसी किसे नूं डेडिकेट करना चाहते हो तुसी भेज सकते हो तो तुहाडा दोस्त उस शायरी नूं इस प्रोग्राम दे विच अपने अंदाज नाल पेश करेगा। रात के अंधेरे में जब चांद खिलता है, रात के अंधेरे में जब चांद खिलता है, मेरा हर एक ख्याल तुमसे ही मिलता है। दूर होकर भी लगता है तू पास मेरे, जैसे कोई रोशन चिराग हो अंधेरे में मेरे।

तेरा आना, यू रातों को तेरा छिपकर मेरे सपनों में आना, तेरा यूं आना, मेरी यादों में यूं बसे रहना हरदम, तेरा यूं आना, दिल में दस्तक देकर पुरानी यादें ताज़ा कराना, तेरा यूं आना, मधुर यादें याद दिलाकर यूं हंसाना, तेरा यूं आना, चेहरे पर हंसी दिलाना और ज़्यादा खुश करना, तेरा यूं आना, मेरे साथ ना होकर भी यादों में यूं साथ होना, तेरा यूं आना, यही प्यार है तेरा मेरा, साथ ना होकर भी साथ होना, तेरा यूं आना।

खताएं यूं कर बैठे शिकायत किससे करते हम, खताएं यूं कर बैठे शिकायत किससे करते हम, दगा हम दिल को दे बैठे मोहब्बत किससे करते हम। खता कुछ यूं हुई हमसे कि दिल रूठ बैठा है, शिकायत किससे करते हम जब अपना ही टूट बैठा है। वो राहें भी सुनी थी, वो मंजिलें भी थी अनजान, भटक गए थे हम ऐसे, खो गया था सारा ज्ञान।

नमस्कार दोस्तों, यह आकाशवाणी जलंधर दा FM रेनबो चैनल और जो कि तुसी इंजॉय कर रहे हो जी अपने न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे उत्ते और अपने दोस्त कुलदीप दे नाल। स्टूडियो दी घड़ी ते 10:31 हो चुके ने ते प्रोग्राम शुरू हो चुके है जी। एक प्यार का नगमा है, प्यारे प्यारे नगमियां दे नाल और प्यारी प्यारी जी शायरी दे नाल तुहानू इस प्रोग्राम दे विच इंजॉय करावांगे। तो आओ शुरुआत करते हैं एक प्यारी जी शायरी तो। आज रात का ये गहरा सन्नाटा, आज रात का ये गहरा सन्नाटा जैसे कुछ अनकही बातें बताता है। चांदनी की ये भीनी भीनी चादर दिल के हर जख्म को सहलाती है। हवा का हर झोंका जो आता है तुम्हारी खुशबू साथ लाता है। इन चमकते हुए तारों की छांव में बस एक तेरा ही अक्स नजर आता है।

सुना है घर बार सब सुने हैं, सुना है घर बार सब सुने हैं, सुना है ये जहां दिन रात सब सुने हैं। नींद भी अब तो आंखों में सजा लगती है, हर खुशी तेरे बिना मुझे बेवजह लगती है। तेरी यादों में इस कदर खोया रहता हूँ, जागते हुए भी तन्हा ही रोया रहता हूँ।

कौन हो तुम ये कैसे बताऊं मैं, कोई गजल हो कि जिसे हरदम गाऊं मैं, जैसे किसी शायरी के नशीले अल्फाज हो, जैसे आम सी बातों में कुछ खास हो। हाँ तुम बिल्कुल वैसा ही एहसास हो। चांदनी से भीगी हुई पूर्णिमा की रात हो, जैसे कि सावन की पहली बरसात हो, जैसे पहले पहले प्यार के ख्यालात हो, मेरी जिंदगी की तुम वैसी ही शुरुआत हो। हाँ तुम बिल्कुल वैसा ही एहसास हो।

आज मेरे दिल में सवालों का बसेरा है, मेरी रूठी किस्मत ने आज फिर से घेरा है। मैं कहता हूँ उनसे कि आओ लूट कर ले जाओ मुझे, ऐसे बिखरा हूँ जैसे किसी ने कांच बिखेरा है। आज मेरे दिल में सवालों का घेरा है। मैं तो करता था मोहब्बत जिनसे, उनसे उम्मीद बहुत थी। वो आएंगे मिलने मुझसे, दिल में एक आश भी थी। टूटी उम्मीदें दिल की, मगर दिल में उनका चेहरा है। मेरी रूठी किस्मत ने आज फिर से घेरा है।

आते जाते तेरी राहों में, आते जाते तेरी राहों में मैं फूल बनकर बिखरता हूँ। आते जाते तेरी राहों में मैं फूल बनकर बिखरता हूँ, तुझे खबर तक नहीं तुझको मैं कितना प्यार करता हूँ।

दुनिया के मेले हम हैं अकेले, कोई तो हमें भी अपने साथ ले ले। मिले जो खुशी बदले जिंदगी, किस्मत ने हमसे खेल है खेले। हम हैं अकेले, ना कोई मंजिल ना कोई महफिल, राहों पे पाए हमने झमेले। हम हैं अकेले, जीवन की धारा ना लौटे दोबारा, कहते हैं मुझसे पानी के रेले। हम हैं अकेले।